0: इंसान की एक बड़ी विशेषता है उसके विचार करने की क्षमता, जो दूसरे परजीवियों में नहीं पाई जाती है। जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपनी जाति और मानवता की सेवा करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीता है। विचार करने की जो अनोखी क्षमता मानव को मिली है, इसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। ऊंची सोच रखिए, आगे बढ़िए। यदि आप कुतुब मीनार के पहले माले से चारों ओर देखते हैं, तो आपको कूड़ा करकट यानी अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के माले से चारों ओर देखते हैं, तो सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती हैं। खराब चीजें आपकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने विचार और आचरण को हर रोज ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हमारा नजरिया उत्तम और व्यवहारिक बनता जाए और हम अच्छे जीवन के लिए उदार और सहनशील बन सके। अच्छा सोचेंगे तभी फल अच्छा होगा।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूरा दुनिया आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। आज सन 2024 के मई महीने की 15 तारीख है और दिन है शुक्रवार। रोजाना की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा में अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का समाचार।

6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। आपातकालीन श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 7:10 पर। 7:15 पर प्रसारित किए जाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार। सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज।

सुबह के 8:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

सुबह के 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप फिर एक बार जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए। 10:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। सुबह के 11 बजे से लेकर 11:10 तक आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों,

0: ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अनिल धीरूभाई अंबानी NDA समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी

0: दोस्तों, इसी के साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक ही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आप पता नहीं श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर जीरो क्लास रोकाने प्रोग्राम में मिली मिली सरोनु कपिचा पाताने पुयुमी तपतोदो सरोपुयुमी का लुकोलीने सी हागे सुनिया बुलियों का स्टेट कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मोदू गिलाम थे। हका मीटिंगों कैबिनेट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग अतंका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 में का मिले लामु दोपका प्रपोजल बिलेने में तले लामु थे। हकागियों कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ला चीफ इंजीनियर सतंका रिक्रूटमेंट पका रिक्रूटमेंट रूल्स मतोला दोने में मुगु दोपतर अप्रूवल बिले लामु थे। न्यू दिल्ली होकर ब्रिक्स मीटिंग पका आने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेब्रोव ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची साउथ अफ्रीकन फॉरेन मिनिस्टर रोनर लोमालोला ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्टर मोरो वायरा मोलोमी बुलियो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मोनी कपाला मोलोमी सिसिचिका आरि देपसकास मपा आहपोई पहेंसला होटल सला दुनिया सा हलालुपाला मित सीपू आदि मीवातां का मोलू का अतुर गति पुजामी का सोला मको होपा गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के दी परनायक मु आदि मीवाता मी अतुर गति में आरी दे सोलुमा सोला सिसिका सांचा ही मियाता मी तर मोलू का मुझ मुमी कागदो पा सोदो पा मुन्या तो हला लुपा लाबलियो मो कि दली पहें पे पुई में बिनिना मुद अतुर गति में अन्यां कम्या अची इंदी मी का लिजा तोला दो हो इंदी का एलियां गमारा हो सोला मुदु हला लुकोला लुदो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपील मिला मुको पसलो के जखरी बला आज ने अन्यान्यांगे ये उन स्टेट होगा मिनिस्टर सतामी आगुदली पोरेन गंदा हो ट्राइबल ममा दोपा आगुदली गंदा होगा इमरजेंसी लोदाला का इंकी नहीं हो टिकेट में 15 डेज का पिया पा बुकिंग मदोपा उन स्टेट होगा सर्कल ऑफिसर्स सबोर्डिनेट ऑफिस हो हेड क्वार्टर्स होगा SDO सतामी से सिक आतो आतो ऑफिस होगा मुगो लुगोमी पेपर हो मुकुमा पा डिजिटली मुदो को पा लुपाला स्टेट कैबिनेट अतः बुलियो ऑस्टेरिटी मेजर पोताको बिलीला मुद मुनुगंधा पा का सुगुर दोगुर बिन सिपोइलेट अगोई वांगसा का मिही वीर नारी श्रीमती कोईमन वांगपंग में बुलियो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक मु ईटानगर का लोक भवन उदय हो का पाला मो मिसलोली का तामोहारोला का दाने में असन दिलाला आलि म्योदो म्योलो होतर कम्युनिटी सर्विस वुमेन एम्पावरमेंट हो यूथ गाइडेंस चिकन प्रोग्राम सो इम बोमो बोला म्यू अतानो खकोला दादो पमतो हलामो लुपाला मुद सिसिक आईएलपी सिस्टम दोने में मुगुकुला ईआईएलपी हला सिसिक आईएलपी परमिट पोता में डिजिटली मुकुला मकिने दोको पा मकिन दोको हला बुजो स्टेट गवर्नमेंट लुकोला लुने सिसिक आगोदली होगा मियो आने आता मी चेक के सोमोलो का आईएलपी पोता आगी हो क्यूआर वेरिफिकेशन मला हो आधार पोता मी का कला तर मकिन दो मुन स्टेट का आईएलपी पोता बेलिक कुमा पा का दूने मियो आता मी पेनल्टीज लाला हो अन्यान्य पतुदू दो पा आलेला तर मकिन दो हला लुको दो हरासिसक एंट्री गेट्स मार्केट्स ला वर्क साइट्स हो SPs हो SDO सतान सरप्राइज आईएलपी चेकिंग मलातर मकिंदो वेसियंगो का पाइनएपल एक्सपो मगला मसन का नोटिफिकेशन पोता बिलेला मसन में स्टेट कैबिनेट आतां हु अप्रूवल बिला मत हलालु कोदो सका पाइनएपल एक्सपो में आगुदली हो का निबो मिवातामी मुन स्टेट हो का आया मर्दों ने पुगोमी चिंपाया पा हो आलने में उद्योग लो हो सीधरी हो का आया मर्द मितर आगुदली मार्केट हो प्यूला मुला या पा हो पा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर तांग मगला मत्ता दो हलालु को लालु दो सरो कतने पुलु को सने हम कने ससी बस रातों प्रोग्राम में मलिम बुनी सरो नुनु का पिजा पा हागे ता देला मोका अजंता का बस नेमी तापतो दो
0: अभी आप सुन रहे थे आप पता नहीं।

श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज की यानी 15 मई की ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही दी अरुणाचल टाइम्स की न्यूज हेडलाइंस।

All the problems of the world will be solved if we stop when we get angry and apologize when we are wrong. अर्थात गुस्से के समय थोड़ा रुक जाओ और क्रोध के समय थोड़ा झुक जाओ, दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस खूबसूरत सुविचार के साथ आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। और कार्यक्रम के आरंभ में झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत तथा विश्व इतिहास में 15 मई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर।

15 मई 1618 को मशहूर वैज्ञानिक जोहन्स केपलर ने अपने थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को एक्सप्लेन किया। इस सिद्धांत ने बताया कि ग्रह सूर्य के चक्कर किस तरह और किस गति से लगाता है। एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, जिसने बाद में स्पेस साइंस और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को मजबूत बुनियादी दी। 15 मई 1940 को डूपॉन्ट कंपनी ने पहली बार नायलन स्टॉकिंग्स को कमर्शियल मार्केट में लॉन्च किया। इस दौर में ये फैशन इंडस्ट्री के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट माना गया, क्योंकि ये सिल्क स्टॉकिंग से सस्ते और ज्यादा ड्यूरेबल थे। धीरे धीरे नायलन दुनिया भर में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पंद्रह मई 1948 को इसराइल के गठन के तुरंत बाद अरब इजरायली युद्ध शुरू हुआ। कई अरब देशों ने इसराइल के खिलाफ सेना भेजी और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। ये युद्ध दुनिया की राजनीति और मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। 15 मई 1972 को ओकिनावा रिवर्सन के तहत ओकिनावा को अमेरिका के कंट्रोल से हटाकर दोबारा जापान को सौंप लिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ओकिनावा पर अमेरिका का प्रशासन था और इस वापसी को जापान के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक कदम माना गया।

आज ही के दिन यानी 15 मई 1817 को महान दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। वे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में से एक थे और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता भी थे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा संगीत अंतराल, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पहला गीत आप सुन पाएंगे किस्मत कनेक्शन फिल्म से बाखुदा तुम ही हो, अलका याग्निक और अतीफ असलम की आवाज में।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, आइए हम नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दी अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, कैबिनेट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक रूल्स, आईएल

बीजेपी रिफॉर्म्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक रोकने के लिए नए नियम और आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम को और सख्त बनाने के फैसले लिए हैं। सरकार ने क्यूआर कोड चेकिंग और आधार वेरिफिकेशन जैसे कदमों पर भी जोर दिया है। एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी बंद अफेक्ट्स नॉर्मल लाइफ इन आईसीआर। एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के 36 घंटे बंद का ईटानगर कैपिटल रीजन में काफी असर देखने को मिला। बाजार बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम रही। अगली हेडलाइन है, आइकॉनिक फिगर एंड सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर बेंगिया तोलुम पासेस अवे। अरुणाचल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और प्रभावशाली व्यक्ति डॉक्टर बेंगिया तोलुम के निधन पर राज्यभर में शोक की लहर है। विभिन्न संगठनों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेंटल हेल्थ एंटी टोबैको अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। दिरंग में स्कूल के बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ और टोबैको के हानिकारक प्रभावों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। अगली हेडलाइन है, हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम हेल्थ। इंडियन आर्मी के स्पेयर हेड गनर्स द्वारा टूटिंग के सिंगा गांव में सीमा आरोग्य अभियान चलाया गया। दूर दराज इलाकों के लोगों को स्वस्थ सेवा और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। एबीपी टीम हॉल 6 मेडल्स एट सेकेंड ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर चैंपियनशिप। अरुणाचल प्रदेश पुलिस बैडमिंटन टीम ने राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। अगली हेडलाइन है, डिजास्टर अफेक्ट्स ओवर 32,000 पीपल इन अरुणाचल फ्रॉम जनवरी टू मई। राज्य में इस साल जनवरी से मई के बीच बारिश, लैंडस्लाइड, आंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से 32,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अगली हेडलाइन है, एपीएसटी साइंस एमओयू विद रेड बस। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस ने रेड बस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे ऑनलाइन बस बुकिंग और भी आसान हो जाएगी। मेल्टिंग खांगरी। तवंग के खांगरी ग्लेशियर के तेजी से पिघलने को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। इससे भविष्य में फ्लड जैसे खतरा बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से कश्मीर में तो कन्याकुमारी, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में।

0: मिलिंदु कुबेला मिफालिंदु को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बेनाम गाम का तेगिया खुला स्टेट कैबिनेट ने मयो फॉरेन टूर्स गुनी मिनिस्टर्स देदंगा ला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देदंगा अंकर चाकर मोक मोक मधुबे मिलिंदु कुनेला मिफादु को होल किंगबे चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के कन्वॉय ngaka changmu fashion ko ni reduction majido kunela mi falen do ko so agulo ltc ang na nga 45 days agu achoya ba advance ba ok official travels nga unloading la longo ga achoya ba set petanga macho do kubala mefa do ko state sarkari nga mu mefa ko na nga sejega ilf system sum ilf guidelines go mele marap lindo kuna lindo ko ba so e ilf system nga marap lindo ko ba ok other base authentication nga mataklag do ko ba la mefa lindo ko West Siang District Bagra Nampam lo Pineapple Expo nga annual business event guba Department of Horticulture nga rigedo kubala State Cabinet nga mayo tulog jide pakula befada doku sru ga tagin ga mayo yung bintam sangka hebo.
1: अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार. तागिन श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और डीआरएम 666 किलो हर्ट्ज पर. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सदाबहार, जहां हम आपको सुनवाते हैं कुछ सूदिंग म्यूजिक्स। तो चलिए ऐसे एक सदाबहार गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत आप सुन पाएंगे जुर्म फिल्म का जब कोई बात बिगड़ जाए, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता।

0: वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: दोस्तों इसी के साथ ही सदा बहार कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूए के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती

कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की

0: धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाए। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
4: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम

0: मलप्पुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग विराजमान शिव देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi.

भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। अब बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सभा के इस बार में लीजिए अब प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत गीत के साथ। पहला गीत आपको सुना रहे हैं गजनी फिल्म का बहका में बहका, कार्तिक की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों आज 15 मई है और आज का दिन भारतीय इतिहास में एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर का, एक ऐसा महान व्यक्ति का जिन्होंने समाज सुधार, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके विचार सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आज भी लोगों को सच्चाई, मानवता और ज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज उनकी जयंती के अवसर पर जानते हैं उनके जीवन और योगदान से जुड़ी कुछ खास बातें। देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1817 को कोलकाता में हुआ था और आगे चलकर उन्होंने समाज को एक नई सोच और नई दिशा देने का काम किया। लोग उन्हें महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने उस दौर में समाज को एक नई सोच देने की कोशिश की जब देश में कई अंधविश्वास और पुरानी कुर्तियां फैली हुई थी। उन्होंने ब्रह्म समाज को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने का काम देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही किया। वो मानते थे कि धर्म का असली मतलब इंसानियत, सच्चाई और ज्ञान से होता है, न कि अंधविश्वास से। उन्होंने वेद और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया और लोगों को सरल और स्पिरिचुअल जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका के माध्यम से युवाओं को भारतीय दर्शन, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो चाहते थे कि लोग मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े रहे। उनके विचारों का प्रभाव आगे चलकर बंगाल रेनेसां में भी देखने को मिला। प्रकृति और अध्यात्म से उनका गहरा संबंध रहा, इसी कारण उन्होंने शांतिनिकेतन में एक शांत और आध्यात्मिक स्थल की स्थापना की, जिसे बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वर्ल्ड फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बदल दिया। आज वही जगह विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को एक प्रगतिशील और जागरूक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया।

इसी के साथ दोस्तों आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। एयरलिफ्ट फिल्म से सोच न सके अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में।

दोस्तों, हेलो इटानगर कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में आओ मिलो चले फिल्म जब वी मेट से। इसी के साथ ही हेलो इटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन भी मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से, और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है। उधर केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडमम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम फिल्में गपसप, जहां मिलती है सिनेमा की दुनिया की ताज़ा खबरें, नई रिलीज फिल्मों के हालचाल और तिथि अपडेट्स, और साथ ही पेश करेंगे चंद खूबसूरत नगमें।

दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुई फिल्मों की। तो दादी की शादी रिलीज हो चुकी है 8 मई को। फिल्म को डायरेक्ट किया है आशीष आर मोहन ने और इसमें नजर आ रहे हैं नीतू कपूर, कपिल शर्मा, रिधिमा कपूर, सानी और सादिया कतीब। ये फिल्म एक एल्डरली वुमेन की कहानी दिखाती है जो लाइफ के स्टेज पर दोबारा शादी करने का फैसला लेती है। बस फिर क्या, फैमिली में इमोशनल ड्रामा, कंफ्यूजन और कॉमेडी का फुल तड़का शुरू हो जाता है। ऑडियंस को फिल्म का इमोशनल और होलसम फैमिली टच काफी पसंद आया। खासकर नीतू कपूर की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर बताया। ऑल्दो कुछ व्यूवर्स को लगा कि फिल्म थोड़ी स्लो थी और कपिल शर्मा का स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा डोमिनेट करता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ओपनिंग वीक रही 1 करोड़ का ओपनिंग वीक में 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर पाई।

अब बात करते हैं फिल्म एक दिन की। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 मई को और ये फिल्म खास बनी क्योंकि साई पल्लवी ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू इसी फिल्म से किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आए जुनेद खान, डायरेक्टेड बाय सुनील पांडे और प्रोड्यूस्ड अंडर आमिर खान प्रोडक्शंस। ये एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो थाई फिल्म वन डे का रिमेक है। फिल्म की स्टोरी डीनो और मीरा के अराउंड घूमती है, एक ऐसा लड़का जो अपने कोलीग से चुपचाप प्यार करता है और एक मैजिकल सिचुएशन के थ्रू उसे सिर्फ एक दिन मिलता है अपने सपनों को जीने का। जापान के सपारो की ब्यूटीफुल लोकेशंस और सॉफ्ट इमोशनल स्टोरी टेलिंग ने फिल्म को विजुअली काफी अपीलिंग बना दिया है। फिल्म की रिव्यू थोड़ी मिक्स रही। क्रिटिक्स ने साई पल्लवी और जुनेद खान की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंसेस की तारीफ की, लेकिन स्क्रीन प्ले को प्रिडिक्टेबल भी कहा। ऑडियंस में स्पेशली साई पल्लवी के फैंस का एक्साइटमेंट हाई रहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्ट्रगल करती दिखी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 4.9 करोड़ के अराउंड रहा।

और अब बात करते हैं राजा शिवाजी फिल्म का। राजा शिवाजी इस साल की सबसे टॉक अबाउट हिस्टोरिकल फिल्म्स में से एक बनी। फिल्म में रितेश देशमुख ने लेजेंडरी वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया। साथ ही कास्ट में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और विद्या बालन भी नजर आए। फिल्म महाराष्ट्र दे यानी 1 मई 2026 को रिलीज हुई। फिल्म का स्केल ग्रैंड था। ह्यूज बैटल सीक्वेंसेस, रॉयल सेट्स और इमोशनल पेट्रियटिज्म के साथ मूवी ने ऑडियंस को हिस्टोरिकल एरा में ले जाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मूवी को एंगेजिंग और इमोशनल बताया, स्पेशली बैकग्राउंड स्कोर और स्टोरी टेलिंग को प्रेज मिला। हाँ, कुछ क्रिटिक्स और रेडिट यूजर ने कास्टिंग और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर क्वेश्चन भी रेज किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका कर दिया। पहले वीक में ही 52 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन और दूसरे वीक में फिल्म 90 करोड़ के करीब पहुंच गई। ये फिल्म मराठी सिनेमा की बिगेस्ट सक्सेस में काउंट की जा रही है।

दोस्तों, आज यानी 15 मई को रिलीज हो रही कुछ फिल्मों की जानकारी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला गीत तशन फिल्म से फलक तक, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

दोस्तों, आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। और दोस्तों, आज यानी 15 मई को रिलीज हो रही है एक सवाल एक इंटेंस सोशल ड्रामा थ्रिलर बताई जा रही है, जहां एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरी कहानी को मिस्ट्री और इमोशंस के जोन में ले जाते हैं। फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मृणाल ठाकुर। ट्रेलर के बाद ही ऑडियंस का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, क्योंकि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी के एक सेंसिटिव इशू को भी टच करती दिखती है। मेकर्स ने प्रॉमिस किया है कि फिल्म सस्पेंस और इमोशंस दोनों का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगी। सोशल मीडिया पर स्पेशली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंटेंस डायलॉग्स और सीरियस अवतार की काफी डिस्कशन हो रही है। क्रिटिक्स को भी लग रहा है कि ये कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा लवर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। एडवांस बुकिंग का रेस्पॉन्स मेट्रो सिटीज में डिसेंट बताया जा रहा है और ट्रेड एनालिस्ट इसे स्लो बट स्टेडी परफॉर्मर मान रहे हैं।

और दोस्तों आज ही पति पत्नी और वो थिएटर्स में रिलीज हो रही है। पति पत्नी और वो 2 एक मॉडर्न डे रोमांटिक कॉमेडी है जहां कंफ्यूजन रिलेशनशिप्स और कॉमेडी का फुल ऑन डोज देखने को मिलेगा। फिल्म में लीड रोल्स में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह। ट्रेलर और प्रमोशनल इवेंट्स के बाद से ही ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर। इस बार कहानी सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल कन्फ्यूजन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स, प्राइवेसी, ट्रस्ट और इमोशनल केओस का फन भी देखने को मिलेगी। आयुष्मान का कॉमिक टाइमिंग और सारा वमिका की फेस पेयरिंग ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है। मेकर्स इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स बता रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हिलेरियस सिचुएशंस की फुल ऑन गारंटी है। तो दोस्तों कल सैटरडे है और उसके बाद संडे, मतलब वीकेंड का परफेक्ट कॉम्बो। पूरी वीक काम, क्लासेस, असाइनमेंट्स और डेली रूटीन में बिजी रहने के बाद अब थोड़ा ब्रेक तो बनता है ना? तो इस वीकेंड अपने फेवरेट फिल्म चूज कीजिए, चाहे कॉमेडी हो, इमोशनल ड्रामा हो या फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और फैमिली या फ्रेंड्स के साथ थिएटर्स का मजा जरूर लीजिएगा।

दोस्तों, अब रुख करते हैं ओटीटी की ओर, जहां स्क्रीन्स तो छोटी है लेकिन धमाका बड़े पर्दे जितना। पर आज के ओटीटी अपडेट्स में बात करते हैं कुछ ऐसे शोज की जो इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफी बज क्रिएट करी है। और सबसे पहले बात करते हैं वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 की। रणदीप हुड्डा एक बार फिर दबंग कॉप अविनाश मिश्रा के रोल में नजर आ रहे हैं। 90s उत्तर प्रदेश के क्राइम वर्ल्ड पर बेस्ड ये सीरीज एक्शन, सस्पेंस और पॉलिटिक्स का सॉलिड मिक्स लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आज से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। फैंस को इसका इंटेंस ट्रेलर काफी पसंद आ रही है। अब बात करते हैं ट्रेलर सीरीज अनदेखी की। ये सीरीज अपने डार्क स्टोरी लाइन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए काफी फेमस है। क्राइम, फैमिली ड्रामा और सस्पेंस का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को हर सीजन में हुक्त रखता है। ओटीटी व्यूवर्स स्पेशली इसके ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले और रॉ परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ करते हैं। और अब बात करते हैं तमिल ओटीटी वज लव इंश्योरेंस कंपनी की। प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी स्टारर ये स्काई फाई रोमांटिक एंटरटेनर काफी डिस्कशन में है। फिल्म को डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवम ने और म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने। फ्यूचरिस्टिक लव स्टोरी और कॉमेडी एंगल की वजह से यंग स्टार्स में इसका काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। थिएटरिकल रिलीज के बाद ये अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम कर रही है। तो दोस्तों, अगर वीकेंड के लिए ओटीटी वॉच लिस्ट रेडी नहीं है तो सस्पेंस के लिए इंस्पेक्टर अविनाश, थ्रिलर के लिए अनदेखी और लाइट फ्यूचरिस्टिक रोमांस के लिए लव इंश्योरेंस कंपनी आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।

दोस्तों आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत। 30 मार्क हाँ फिल्म से शीला की जवानी सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: Jay, come here.
1: Yes, sir.
0: General Malappa, meet this brave officer.
2: Of course, I've heard about you, sir.
0: Mrs. Malappa.
1: Hello.
0: Inki beti Pooja.
3: साहेबान कदरदान मेहरबान अजिन फार्म के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी
4: ये निगाहें नश्तर ये होंठ कौसर मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा
5: अब भी वक्त है निकल लो भाई लोग नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा
4: ये शोखी ये अदाएं ये बांकपन इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या
5: अच्छा चल इतना बता तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या
4: बरखुदार हुस्न का मजाक ना उड़ा कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए मन चला है खूबसूरत है मगर लड़का है तू तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम का ये अंक ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, कार्यक्रम का अगली फरमाइश हमें आया है दोईमुख से तेजी सिसान जी का। तेजी जी ने रिक्वेस्ट करी है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म से मेरे लिए तुम काफी हो। और सिसाल जी ने इस गीत को डेडिकेट किया है अपनी ब्यूटीफुल वाइफ क्रिस्टीना जी को। उम्मीद करते हैं आप दोनों हमें सुन रहे होंगे, तो चलिए आप दोनों के प्यार के नाम सुनते हैं, मेरे लिए तुम काफी हो।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर जो हमें आया है नाहरलगन से और ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है सुम्पी जी ने रिक्वेस्ट करी है तेरी इसी अदा पे सनम दीवाना फिल्म से जिसे गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने

तो सब बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आज रेडियो डिमांड कार्यक्रम के अंतिम रिक्वेस्ट पर हम पहुंच चुके हैं। अंतिम रिक्वेस्ट ले रहे हैं बंदर देवा से यमी जी का। यमी जी को सुनना है मिसमैच फिल्म का इश्क है।

दोस्तों इसी के साथ ही हम आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के समापन पर आप पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही कल भी आप हमारे साथ जुड़िए और अपने पसंदीदा गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेजिएगा। और साथ ही बता दूं दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अच्छी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। लेकिन दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी आरजे दंपक। तो आप मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे तुन्या को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, तो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरु मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शादा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे दुनिया जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:11 हो रहे हैं। आपको बता दूं इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे दुनिया के साथ और अब आप जुड़े हुए हैं आरजे दांपा यानी मेरे साथ। हमारे इस दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तब चलिए श्रोताओ, दूसरे प्रसारण सभा की आरंभ करती हुई पेश है कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

कार्यक्रम फिल्मी लहर में आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीत के बोल है फिर मिलेंगे चलते चलते और इस गीत को गाया है सोनू निगम ने और इस गाने के संगीतकार है सलीम सुलेमान और गीत के बोल जयदीप सहानी ने लिखे हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत अलीसा शिंदे की आवाज में फिल्म क्या लव स्टोरी है से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में और पेश है गीत आई हैड लव स्टोरी फिल्म से। गीत के बोल है सदका के और इस गीत को गाया है विशाल शेखर और महालक्ष्मी अय्यर ने।

श्रोता आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a six-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. Briefing media in New Delhi, Mr. Pradhan assured fairness and transparency in the exam process. The minister added that NEET UG examination will be conducted in computer-based test CBT mode from next year instead of the existing OMR-based mode.
4: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, हमारे स्टूडियो की गली में इस वक्त 12:10 हो रहे हैं। आपको बता दो कि इसके साथ अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम गजल। दोस्तों, कार्यक्रम गजल में पेश है सबसे पहला गजल जगजीत सिंह की आवाज में, और आपको बता दो ये गजल फिल्म सरफरोश का एक हिस्सा है।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गजल जो कि गीत सिंह की आवाज में फिल्म साथ साथ से। दोस्तों गजल की सबसे खास बात इसकी कम शब्दों में गहरी बात कहने की कला है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, लेकिन पूरी गजल एक एहसास या माहौल भी बनाती है। तो चलिए कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए पेश है पंकज उदास की आवाज में गजल चांदी जैसा रंग।
1: दोस्तों आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने।

दोस्तों कार्यक्रम गीतमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर हम गाने प्ले करते हैं हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए। जी हाँ, ये सेगमेंट हम उन्हीं के लिए रखे हैं। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का टाइटल ट्रैक। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के टाइटल ट्रैक को मशहूर गायक उदित नारायण ने अपनी आवाज दी है। इस गाने का संगीत जतिन ललित की जोड़ी द्वारा तैयार किया गया था और इसके बोल जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए थे।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म परदेश से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फौज भाई और बहनों का गीत माला में और मैं हूं आपकी आरजे साथी दांपक। तो दोस्तों अब चलिए कार्यक्रम में आपके लिए पेश है और एक खूबसूरत गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। गीत के बोल है इंडिया वाले और इस गीत को गाया है के नीति मोहन, विशाल ददलानी और शंकर महादेवन ने।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा

0: दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार की एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s टू 80s की। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी उन पुराने यादों की सफर की ओर, वो गाने जो आज भी खास है और जिंदा है। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रुदाली से, गीत के बोल है दिल होम होम करे, और आपको मैं सुनाने जा रही हूँ फीमेल वर्जन लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत करावान फिल्म से। गीत के बोल है कितना प्यारा वादा, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी। दोस्तों, करावान एक क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे निर्देशक नजीर हुसैन ने बनाया था। इसमें आशा पारेख, जितेंद्र और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के दमदार संगीत आदि बर्मन ने दिया था। इसके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। तो पेश है खराबन फिल्म से ये गीत।

Bonito.

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में. और ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे गीत करावान फिल्म से. अब आपके लिए पेश है गीत आपकी कसम फिल्म से. गीत के बोल है करवटे बदलते रहे और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने.

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। आपको बता दूं इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यानी पुराने गानों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप मेरे साथ जुड़ेंगे नई फिल्मों के गाने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब चलिए आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत और हिंदी फिल्मी गानों के सिलसिलों में आपके लिए सबसे पहले पेश है गीत वांटेड फिल्म से, गीत के बोल है दिल लेके दर्द दिल और इसकी का आवाज दी है शान और श्रेया कौशल ने। दोस्तों इस फिल्म ने सलमान खान के करियर को नई ऊंचाई दी और उनके एक्शन हीरो इमेज को मजबूत किया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वाला डायलॉग बहुत फेमस हुआ। फिल्म में एक्शन कॉमेडी और रोमांस का अच्छा मिश्रण था। आयशा टाकिया और प्रकाश राज की एक्टिंग भी काफी पसंद की गई। दोस्तों इसके गाने जैसे जलवा और लव मी काफी हिट हुए। यह फिल्म तेलुगु फिल्म पोकरी का हिंदी रिमेक थी। आज भी वांटेड को सलमान खान की सबसे एंटरटेनिंग फिल्मों में से गिना जाता है। तो पेश है वांटेड फिल्म से ये गीत।

बस आप सुन रहे थे एक गीत नीरज फेदार की आवाज में, और अब आपके लिए पेश है गीत अंग्रेजी मीडियम फिल्म से, और इस गीत को गाया है सचिन जिगर और विशाल ददलानी ने।

0: Association Stadium in Dharamshala last night, Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की एक रिपोर्ट
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का

0: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब

0: किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रुनासम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको 90s के गीतों के सफर की ओर ले चलने की। जी हाँ दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। और दोस्तों, 90s के गानों की खास बात उनका दिल से जुड़ा हुआ एहसास था। उस दौर के गानों में मेलोडी, साफ लिरिक्स और याद रह जाने वाली धुनें होती थी। मेलोडी का गोल्डन ईरा, गानों की धुन इतनी मधुर होती थी कि सालों बाद भी लोग गुनगुनाते हैं। प्यार, दोस्ती, जुदाई और खुशी को बहुत खूबसूरती से लिखा जाता था। कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम जैसे सिंगर्स की आवाज हर घर में सुनाई देती थी। दोस्तों, रोमांटिक फिल्मों के गाने बहुत लोकप्रिय थे, जैसे पहला नशा, तुझे देखा तो टिप टिप बरसा पानी। उस समय कम ऑटो ट्यून और ज्यादा असली आवाज पर ध्यान होता था। कैसेट और रेडियो का दौर होने की वजह से गानों का अलग ही क्रेज था। इसी वजह से 90s के गाने आज भी लोगों को नॉस्टैल्जिया महसूस कराते हैं। जी हाँ, तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत, अकेले हम अकेले तुम फिल्म से। दोस्तों, आशा है ये गीत आपको उन यादों पर ले जाएंगे। गीत के बोल है, दिल मेरा चुराया क्यों, और इस गीत को गाया है कुमार शानू और अनु मलिक ने।

बस इससे गीत के बाद अब पेश है गीत दामिनी फिल्म से। गीत के बोल हैं गवाह हैं चांद तारे और इसकी आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

0: each amid spike in global energy prices. Indraprastha Gas Limited also increased the prices of compressed natural gas CNG for by 2 rupees today. European Union, including India, in the revised draft list for the continued export of aquaculture products to the EU market. Ministry of Commerce and Industry says that the earlier regulation had not included India. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade says advance authorization for import of gold shall be used subject to a maximum remission quantity of 100 kilograms. A beneficiary convention of the Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana and the state-level award distribution ceremony of the Maha Awas Abhiyan to held in Sitara, Maharashtra today. Under the Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana, 5 lakh houses constructed for beneficiaries will be handed over during the event. That's all in this news headlines. Namaskar.
1: Jakasuni Tanaga Dibrukutunghid, Halutla, Tarikap Monkal in Bajikasam Nitra. K Dimping Adong like some crimeing the Sukagachuni. Union Education Minister Dharmendra Pradhan Kavika Kraika students who are priority the Nika government Wapa. Once Kavi briefing Katka Media Livanu Delhi Hai, Mr. Pradhan Kavika Kraika National Testing Agency, like announced Katkato, Komolaira, Tarikatamakomora exams, re-examination Kang Neet. Undergraduate katam katam katam law hai. Appear kagat students who are received katmato admit card when examinations fa anja tarik anlay hai tarik kap makam written leaven. Once a minister katina khai ka examination anja kanda katmato computer based test when mode when kumo law hai ka duneka mar sheet mode hai ka maya ka. One more education minister admit katka NTO requires a definite reforms nagle khai ka steps tala duneka strengthen examination system prevent the kadunka future irregularities to aka. One more all companies to aka raise katka lakwankung tin barila van petrol and diesel price fa van apakasam 3 rupees per liter lakwan global energy price le petrol price alik rise samla 94.77 apai hai ka 97.77 apai per liter le diesel price when increase samla 87.67 hai ka 90.67 rupees per liter New Delhi hai van mara Indraprastha Gas Limited increase kat ka price when compressed natural gas fa rupees ki intung le ka van mara apai Look when price hike some look marakatan rate 1 kilogram CNG for Delhi 179.09 apai 187.70 rupees Ghaziabad net Noida li. In Gurugram li 1 katan rate kumo kilogram CNG for 84.12 rupees. One mara Governor Lieutenant General Keti Panayak week extended warm greetings week Adi Kumti Tuave State Song Tuave occasion li 1. Mansakavik express katka anja age old traditions anja preserve kanto indigenous custom nag wisdom nag social harmony nag culture identity younger generations to wali duneka. Mansakakraika anja festival when kumo hatai cherished agriculture festival adi tribe to wafa alikwanta thong thanman deep bond between humanity nature nag community life le celebrate kanto anja farming season katan play duneka kraika. When my state cabinet meeting, the Chief Minister Pema Khandu Kangho approved Katka proposed the Department of Administration reforms and training for framing Anja Arunachal Pradesh public examinations for prevention of unfair means recruitment Linha Kraika Rose Katamukatamukatam Love Heaven. Aim Thak to safeguarding safeguards against question paper leak Linha Vansak unfair practice recruitment examination conduct and the various recruiting agencies state leaven. Additionally, Cabinet approved cut amendment and modifications of recruitment rules relating administration officers and chief engineers and various departments and approval Arunachal Pradesh tenancy rules katam katam katam lao hai dunika khai ka. One more appeal cut ka Prime Minister Narendra Modi ka state cabinet have issue cut ka austerity measures and compliance cut ka chupuina. Once ka samha key measures and gong heaven provisions katka foreign travels wa minister na government wa officially bantaka duneka law mo kang vansaka 50% reduction katma to convies ACM DCM nag minister fa वर्चुअल फर्स्ट पॉलिसी फॉर ऑल दुपुई मीटिंग्स का टिकट अनअवॉर्डेबल ऑफिशियल ट्रेवल्स एंड बुक तक कैप मोकल इन एडवांसली एल टी सी ट्रेवल बिशी मोकलिन इट एडवांसली वही मो एडोप्शन ई ऑफिस पेपरलेस डेक्स अंजा चुपुई सब कोऑर्डिनेट ऑफिस सर्कल ऑफिस इज डी ओ हेडक्वार्टर दुआ मार्च लैक तमक तमो निन है इंकरेज करके कर पोलिंग न यूज द कैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुपुई ऑफिसर्स स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स दुआ भी खाए का मेजर्स अलग अन गुम है इंकरेज करके तशिब्द ने क बाय स्वदेशी बाय लोकल तो नहीं कर खाए का अलग स्ट्रेन खान मत नेशनल और इम्पावरिंग किन कम्युनिटीज तो आवे वनमार चेयरमैन ऑफ स्टेट लोकायुक्त जस्टिस रिटायरमेंट प्रशांत कुमार देका वी कर खाए का गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी पर नायक रिटायर जब लोक भवन ईटानगर हैंग हावे खाए का डिटेल डिस्कशन इश्यू रिलेटेड करप्शन लेन है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वंसा को तू मन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवन अलग एक्सप्रेस कट का डीव कंसर्न खान का अलग प्रोसीज्यूर तो आवे विलफुल वायलेशंस तो वा एग्जिस्ट कम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अंजा डिपार्टमेंट नक इंडिविजुअली गवर्नर इम्फेसाइज कट का करप्शन अंजा वीकनेस गवर्नेंस गवर्नेंस जो फाय माय दोने का अलग वन खाए का इरोज कन तो पब्लिक ट्रस्ट नक इंस्टीट्यूशन दोने का खाए का गवर्नर का अलग अंडरस्कोर इंपॉर्टेंस रोल खाए का लोकायुक्ता भी इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी नक ombudsman interested safeguard takadunik interest and song len hedunika vanmara alik order strength nak modernizing existing ilp system state government to agung hawa announced kit ka fully digitalizations anja ilp system and qr code verifications samang checker ma to check gate eliminate fake permits wa ka वन सक इंश्योर करके कंप्लीट ट्रांसबिलिटी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेन मैंडेटरी संबंध दोनों का पुलिस वेरिफिकेशन काम वन सक स्ट्रिक्ट स्पॉन्सर अकाउंटेबिलिटी अंजा काम वन आई एल पी फा चौमत दोनों का मैंडेटरी कतान गाइडलाइंस ले इंश्योर करके इनहेंस करके पेनल्टीज अंजा ओवर स्टे कंतर मायर आई एल पी वॉलेशन या प्रोविजन अल्ला बार वॉलेटर कंतर अप टू लव के इनकम दोनों का खाएगा डायरेक्टिव अलग इशू कट का डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ना सरप्राइज चेक अंजा कट मा तो एस पी तुआ एस डी पी ओ तुआ एंट्री गेट ली मार्केट वर्क साइट ली वन सकती नक लॉन्ग रूट्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कट मा तो दोनों का खाएगा तुम्हें मोलाय का सॉन्ग अन सब मचन

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सिपा सिसेपसी चम सी मीटर ओपा चिसे भा किलो हस में मुचला खामते खामती हो को मा हो मने वन सोक्या लानी बीते सोहिंग पा साउ तो इंग्रजी पीमु सोहिंग साउ हो नुन मे नै से भावन नम हो वती कुन सिंग कुन मंग तंगलाई मक्सोब नम खाम मने हने थोम खाता यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वा नीट यूजी री एग्जामिनेशन पीमु सोहिंग साउ हो नै लोक नुन अंतिमा मई टिपियन निसी खाम ने लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA खाउ त्याव हर मा तंग ने लखा अंतिसर एग्जाम ने खाउ नून अन मा सिपसी वन मई एडमिट का तिनाई निसी लोकन हर मा नम हो कंपनीज नमेन कुपा कुना मई खन पेट्रोल खन सम डीजल लोग सामत्रा औ खन का हनै पेट्रो नै खौ कौसप सी चम चेसप चेत्रा खनसी थेंग कौसप चेत चम चेसप चेत कन्याव तंगमन खन डीजल लोक पेसप चेत चम होसप चेत्रा खनसी कौसप चम होसप चेत्रा थिंग कन्याव निया केन मंग न्यू दिल्ली मै तखा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को खन सीएनजी नै लोक सोंत्रा औ खन कनका गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक कुन सिंगमंग फन आदि कम्युनिटी तंगलोंग तंगमंग मै वन मत यमपोय इतोर गिदी मै औसी वे अकेओ कन हमा नम हो स्टेट कैबिनेट मीटिंग मै चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वन मंगा Proposal of the Department of Administrative Reform and Training for Farming and Arunachal Pradesh Public Examination Rule Pimu Songheng Sao Ho Nai Approve Her Kanka Namkham Prime Minister Narendra Modi Aosi State Cabinet Mai Kanpa Kali Mung Foreign Khansam Government Officer Khao ที่ว่าเอายอมจะหั่งปีเลืองตั้งใน 50% reduction of convo of ACM DCM ขันสัมมินิสเตอร์ในเขาตั้งอามาอามูล่องในเขาก็ป้า person adoption e-office paperless dex ที่เป็นนำหอChairman of State Lokayukta Justice Retired Prasanta Kumar Dika Wan Manai Tang Governor Lieutenant General K.T. Parnayak Niyati Lok Bhavan Itanagar Mai Tak Hup Nang Kanka Pong Loi Corruption Transparency Accountability Khansam Effective Investigation Mai Aosi Nam Kham Lo Khai Kanka Nam Ho वन मंगा मई स्टेट गवर्नमेंट खाउ ई आई एल पी सिस्टम तंगकोप क्यू आर कोड हमसी फुली डिजिटलाइजेशन तक पुट हो हमा नम हो खनसम चाहा मने को खाम तो खैने नम हो मने मुई खाम मई लोकनांग चिनवा मनचे मैं हने थोम खाता

से भी आप सुन रहे थे थैगाम दे श्वेता और मिश्मी कुमार श्वेता का कार्यक्रम। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी करुण एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शुदा हवा के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में इस सेगमेंट पर आपके लिए प्ले होंगे गीत एक्शन रिप्रे फिल्म की। सबसे पहले आपको सुना रहे हैं गीत नखरे, जिसे गाया है फ्रैंकोइस कैस्टेलिनो ने।

दोस्तों एक्शन ब्रेक में अक्षय कुमार की एक अलग तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें टाइम ट्रेवल और 70s का मजेदार अंदाज दिखाया गया था। 70s का रेट्रो लुक, कपड़े, हेयर स्टाइल, गाड़ियां और म्यूजिक पूरी तरह पुराने दौर की फील देते हैं। फिल्म में टाइम मशीन और अतीत बदलने का कॉन्सेप्ट मजेदार तरीके से दिखाया गया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन इसका रेट्रो स्टाइल और म्यूजिक आज भी कई लोगों को पसंद आता है।

0: दो साल सुन रहे थे कि उम्मी का सिंह की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्लेस है। आपको बता दूं कि इसके साथ ही फिल्मी गानों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुन पाएंगे वांच और श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर अन्य मेले में निबन आगा तारीख शुक्रवार ए पोहांसों आजम बाजी पुन्नी मिनट मुख्य पिछम के वांचो साइका पों कपई मोवा कावा पों फाले वांग का वांगसुए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ए गवर्नमेंट ए लाइन अनु सम्मान पंक मके होम को सत आचों के होली अंग ए ला टाइपु बोमा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA होथम ए नीट यूजी 2026 एग्जाम चला नेलेला अंग क्या तारीख हन पक अंग हाई अंग क्या ले निसा तार निसामता तारीख तीन फन ले को दुआ बोमा हजा एग्जाम को अंग क्या लाइन अनु संपो अंग होम एडमिट कार्ड लाई हाई अंग क्या ले निबन आली तारीख मन ले को ओतुन लंदा गुम क्या ले वन ले मिस्टर प्रधान अजा का अनि न्यू दिल्ली म का हंगो तमी थम पै वन के जंग वन का जे म ngai वन ले बोमा ची ए हजा नीट यूजी एग्जामिनेशन परीक्षा हाई अंग के जंग पोम खंग ए ओएमआर होलम मखंग चिचंग ले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हो सीबीटी मोड मखंग ए लाहम ऐ लचु वन चावन तो जो एनर्जी था जो लोएडों लहाई क्या खोंग तो वंटी कंपनी स्थम ए पेट्रोल या डीजल वंटी था लीटर पा तो उनको आजम पोंग लतम अदंडवा हजा कोल न्यू दिल्ली मा पेट्रोल वंटी था लीटर पा तो उनको पुलिबन आली पुजम बन अनत पैसा पोंग ले साजाई क्या अथा पुली बन अनत पुजम बन अनत पैसा पोंग ले दोंग ले है ना बोमा डीजल वन ती था उनको पुली अनत पुजम अनत पैसा चंगजाई क्या उनको पुली बन पुजम अनत पैसा तो दोंग ले है ना कौमा अजंग बजबा माम इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड होटम ए चू कंप्रेस नेचुरल गैस CNG था के जी पा तो उनको आनी पों ले अदन अचंदवा बोमा न्यू दिल्ली मा हजा CNG था अथा के जी पा तो उनको पूजम बन आकू पॉइंट जीरो आकू पैसा पों ले साले सतना अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनाइक ए अनि आदि ली कान खनक नु अंग क्या इतोर गिदी पोन पो मन मा होने खलचु आदि खनक नु अंग ले स्टेट जो खनक नु अंग चि मोंग मेका हो ले गवर्नर आजा चि मोंग मेका हो मा आदि खनक नु अंग जत खत खा क्या जंग मन मान जाय पोन पो हाजा इतोर गिदी मा खनक मिसा सजन नेचर हिया खनक नु सजन टिंग सोंग नुक निम्बा मा ताता फै चा फान ले स्वाक अंग क्या होलिंग होजु तैनांग तैक्या ngai le ngan tai pu bo ma ha ya pon jang pu to jang mot man za si jen ho wang wang ke chen ma pon pon la bang pu le wan le mani aso pho kya state cabinet tham meeting tu so ma chief minister pema khandu em arunachal pradesh public examination measures for prevention of unfair means in recruitment rule 2026 wan lam zingi jau puku ma state administrative reforms and training department tham a ko kya proposal ka angau to approval ko do cabinet tham a tu so ma jabo ma administrative officers tham hiya ma ma mo department angkya chief engineers tham kamazing angkya recruitment rules walam tam amendment hiya modification hon le zinga jau angkya ka to approval ko kya bo ma arunachal pradesh अरुणाचल प्रदेश ट्रेनी रूल्स 2026 वालम तो चू अप्रूवल कॉल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए देश खनक नु अंगजी के शोम ले वनजे क्या वनजे ते क्या का अंगो फो मा ला अले ले अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट थम ए मनी हाई अंगे जंग पोंता

0: minister siya government officials po foreign desport to ahamatai ang song chitam angkya hcm dcm here ministers tum convoy puni ban person ahik ajo angkya tale kya meeting to so virtual holam makang angot aso angkya pangnu sub subordinate office circle office ya sdo headquarters for high in 2027 zampo march late malala e office ba paperless office ang zingi jawla achang ang kya bo manok bai office no bai officers bo ma school ya college line no sam po a public transport gari ghora pho ma ahamatai ham ang kya mongtekan sung हमते हम अंग तुंगता हाय ओ लक्या ऑस्टेरिटी मेजर्स का कोड अरुणाचल प्रदेश मा थपोंग एताय नंग तै के आईएलपी सिस्टम वालम ताम आजन आजाय ले आसाक आजोंग अंग आजोंग के लम माय स्टेट गवर्नमेंट ए मनी स्टेट मके पंग वे चेक गेट्स फॉर तो तलक्या होमु आईएलपी लाइंग अक जिंगे जौ ले हाय डोंग के खनक मिसा फॉर तो लम ले अंगाय तक ले चोक पुकु मा QR code verification phai kya EILP system walam hovang wangpo ola kya ka ngai do haja hozan EILP system walam ma state to napadong kya khanak pho talaba tole atak la swak puku ma aadhar based authentication police verification bo ma work ILP han pak ma sak le yo sponsor accountability la angya motto chithai angya holi mandatory ang e la le taile bo ma haja hozen guidelines walam ma ILP ma tin le pha ke tunu han pak to kai le statement ngo tong kya hia mamu ILP walam pho lenzen kya mi ang jangpu ani kaple jo jail to tham angya pha sak ko to na chok angya walam chu jing le tainang taile ka ho ivai ija akashwani itana
1: dosto bhi aap sun rahe the vanchal shwetav ka samachar vanchal shwetav ka karyakram aap aage aur bhi sun sakte hain hamare medium wave channel 444.6 meter yani 675 kHz tatha drm 666 kHz par अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।
2: तेरे दिल का मेरे दिल से
3: दोस्तों अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम में आपके लिए सबसे पहले पेश है गीत अजित प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। गीत के बोल है प्रेम की नैया और इस गीत का आवाज दी है नीरज श्रीदार, प्रीतम चक्रवर्ती और सुजन डी मैनो ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत गुरु फिल्म से, और अब आपके लिए पेश है गीत है वे फिल्म से, क्योंकि बोल है दोलना और इस गीत को गाया है सोनू निगम ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। आपको बता दूं कि इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे ईदो मिसमी श्रोताओं का समाचार।
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे ईदो मिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, समाचारों के बाद अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और हिंदी फिल्मी गीतों के सिलसिलों में आपके लिए पेश है गीत क्रुक फिल्म से। गीत के बोल है मेरे बिना और इस गीत को गाया है निखिल डिसूजा और प्रीतम चक्रवर्ती ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत शान और श्रेया घोषाल के आवाज में फिल्म जश्न से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारी दूसरे प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप सुन पाएंगे तांसा शता का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे नीलम जी। हमारे इस दूसरे प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक पी तोले तथा तकनीकी अभियंता एच एम भूषण। और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दावा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

tinang katmo phanglang rang blum banga kache hai mo booking kurang achi moro to Purju subordinate office tamra nai circle office tamra la SDO headquarter tamra pang hajanira crossnet pang mars jiling kau pomoso rasasi person e office nai paperless desk tayanglang achi mo achi jam school nai college लिवन सामरा पर जो ऑफिसर्स हेमडॉप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से म लमलो लमत अरो नंगमु प सहेंग मने सिंगमु वंग मई प अमाई तो यंग म नंगमु जंगमन तांवांग ने लोकल तांवांग रे थांग तहेन मु रो डॉप लमलो प लमत अरुणाचल प्रदेश स्टेट लोकायुता चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस प्रशांत कुमार डेका प मनीषा ईटानगर नंग लोकाय ईटानगर नंग लोक भवन नंग गवर्नर केटी पर्णाइजाम रमद प्रजु पनवानेर करप्शन कम कमुंग नंग नरीम रफांत नंग म आरो ट्रांसपेरेंसी नै अकाउंटेबिलिटी कमुंग नंग रो रफान हेत आरो डिपार्टमेंट ताम नै आखाउ मै हेर मचुवंग नियम कानून प लौलाई कुरु खाम गवर्नर रन प थबात नंग करप्शन कम र सुरक्री कम सोम प थबार जम सिंगमुंग मैर ऑफिस ताम संग रतुंग मन प नुंगमु मोरो ग आरो लोक आयुक्ता प इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी कयांग रे सिंगमुंग मैमा अहरा दाम कम सोम रंग रार मोरो गवर्नर रो द मचुवांग इनर लाइन परमिट आईएलपी सिस्टम लाइप सहेंग मतान रो स्टेट सुरकैर मनीषा फेक परमिट ताम्प तंगम वर्ड ऑफ चेक गेट नंग क्यूआर कोड वेरिफिकेशन जम ई आईएलपी सिस्टम प डिजिटलाइज तयांग मरो खेप मई प नरी म तंगम आधार बेस ऑथेंटिकेशन राशि पर म पुलिस वेरिफिकेशन प रारु राशि मोरो अन्य गाइडलाइंस लमलु नंग रोखेत परजु ओवरस्टे मनै आईएलपी लौलाइसि वनम पेनल्टी फाइन गन प तचेंत परम डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स म डब्लम लूप फान गुत अरो अन्य लम लूप अहम सेरम एसपीस हेंग ने डीएसपीस हेंग चेंगेट ताम ने मार्केट तामरा कमसुम रे जगह ताम प तखोंग फुक चेकिंग तयंग रंग मोरो डब्रो त रुंग रंग इतना थुम रा

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हमारे प्यारे श्रोता मित्र, आप सभी को आपके अपने प्रेरित साथी नीलम का नमस्कार और आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हाँ श्रोता मित्र, अब तक के सफर में आपके साथ बनी हुई थी आरजे दामपाक। आरजे दामपाक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए। और श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:29 हो रहे हैं। तो चलिए अब इस तीसरी प्रसारण सभा के आरंभ में पेश करते हैं कार्यक्रम।

जी हाँ दोस्तों, परिवार के बिना जिंदगी का कोई मायने नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज 15 मई है और हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही आप सभी को अरुण एफएम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये दिन हमें अपने रिश्तों को समय देने, अपनों की भावनाओं को समझने और परिवार की अहमियत को महसूस करने का मौका देता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत की कहानी काफी दिलचस्प है, आपको हम ये बताएंगे। जी हाँ, इससे जुड़े इतिहास के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन आइए इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं मेरी जंगल का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल को हम जीत सकते हैं। आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे इस खूबसूरत गीत को, लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में, मेरी जंग फिल्म से। श्रोता मित्र, परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होता, बल्कि वो अपना एहसास होता है, जहाँ हर खुशी दोगुनी और हर दुख आधा हो जाता है। जब इंसान जिंदगी की भागदौड़ में थक जाता है, तब परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। माँ का प्यार, पिता का भरोसा, भाई बहनों का साथ और अपनों की परवाह इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और असली दौलत परिवार का प्यार और अपनापन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुरुआत की कहानी काफी दिलचस्प है। 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने परिवारों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। 1983 में ये कहा गया कि समाज और विकास में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कई बैठकों और चर्चाओं के जरिए परिवारों के महत्व को दुनिया के सामने लाया गया। फिर 9 दिसंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसके बाद 1993 में फैसला लिया गया कि हर साल 15 मई को, यानी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का मकसद लोगों को परिवार की अहमियत समझाना और परिवारों से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्स पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। और कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। जी हाँ दोस्तों, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों ने मिलकर 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए। इनका उद्देश्य गरीबी खत्म करना, भेदभाव रोकना और सभी के लिए बेहतर जीवन बनाना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने में परिवार की भूमिका सबसे अहम मानी गई, क्योंकि मजबूत परिवार ही एक सुरक्षित, खुशहाल और बेहतर समाज की पहचान होते हैं। परिवार को जोड़े रखने के लिए बड़े काम नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास जरूरी होते हैं। ये आदतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन अपनानी चाहिए, ताकि रिश्तों में प्यार, अपनापन और भरोसा हमेशा बना रहे।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे यादें फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत हरिहरन की आवाज में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हम सफर है। तो चलिए इसी के साथ ही आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद यानी कि 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहे ये गीत।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश में संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाज के टी पारनायक ने अतर्गुति के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों, विशेषकर आदि समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत, प्रशासनिक, सुशासन एवं विकासात्मक विषयों पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा इनरलाइन परमिट ILP प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी के अनुपालन हेतु उपाय जारी किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है।
1: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में UAE नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा है कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूरोप की 6 दिन की दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। UAE के F-16 लड़ाकू विमान ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने अतरगुदे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों विशेषकर आदि समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये प्राचीन परंपरा स्वदेशी रीति रिवाजों और ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ युवा पीढ़ी के सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि आदि जनजाति का ये प्रमुख कृषि पर्व अतरगुदे मानवता प्रकृति और सामुदायिक जीवन के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है। खेती के मौसम की शुरुआत मनाया जाने वाला यह पर्व एकता सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने कामना की है कि यह पर्व प्रत्येक परिवार के लिए सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और भरपूर फसलें लेकर आएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत प्रशासनिक सुशासन एवं विकासात्मक विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों में प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देना शामिल है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश लोक परीक्षा भर्ती में अनुचित संबंधों और रोकथाम हेतु उपाय नियम 2026 तैयार की जाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य राज्य की विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा उपाय को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह डिजिटल ILP प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें सभी चेक गेट्स पर QR कोड सत्यापन की व्यवस्था होगी ताकि फर्जी परमिट पर रोक लगाई जा सके। वर्क ILP के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य पुलिस सत्यापन और प्रायोजकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी जिससे पूरी तरह ट्रस्टेबिलिटी बनी रहेगी। ILP उल्लंघन और निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें उल्लंघनकर्ताओं पर 2 वर्ष तक प्रबंधन लगाने की व्यवस्था भी शामिल है। जिला टास्क फोर्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं तथा SP और SDPO द्वारा प्रवेश द्वारों बाजारों कार्यस्थलों और अन्य मार्गों पर अचानक जांच अभियान चलाकर नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के सभी जानदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा है कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में है। एक रिपोर्ट।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तेल की कीमतों में वृद्धि पर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि हो गई है तब भारत ने पेट्रोल में दाम में केवल 3.2% की और डीजल में 3.4% की ही वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता से संतुलित कर रहा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया था। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: This is Akashvani, the news read by Appu Gapak. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a six-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi had since met President Sheikh Mohammed bin Zayed, with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the breadth of this engagement reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateralism cooperation in a rapidly changing world. He further said there is an urgent need to reform the international financial architecture. Earlier, Dr. S. Jaishankar met the foreign minister of Iran, Abbas Araghchi, in New Delhi today. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted on 21st of June. Earlier, the exam, which was held on 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and CBI is investigating the matter. The exam conducting agency also requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. Briefing media in New Delhi, Pradhan assured fairness and transparency in the exam process. BJP MLA Rathindra Basu has been elected unopposed as the new Speaker of the West Bengal Legislative Assembly. Basu, representing Kuch Bihar South as a legislator of the BJP, registered his maiden victory in the recently held assembly polls. The election for the post was conducted this morning under the supervision of pro-tem Speaker Tapas Roy. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally proposed Basu's name. The House confirmed the appointment through a voice vote. Members of the Trinamool Congress were not present during the election process but later joined the session. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim tomorrow after assuming office. During the visit, the Vice President will grace the statehood day celebrations of Sikkim in Gangtok. Governor and Chief Minister of Sikkim Union Donor Minister are also likely to attend the event, to be held at Manan Kendra at Gangtok. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw and Environment Minister Bhupender Yadav today virtually laid the foundation stone and dedicated multiple projects worth over 400 crore rupees in Rajasthan. The projects are related to semiconductor, railway and sewage water treatment plant. The industrial city of Ludhiana in Punjab has now been connected to India's commercial aviation network with the arrival of the first Air Asia flight at Halwara Airport early this morning. The development has brought cheer among industrialists and residents, fulfilling a long-pending demand of nearly three decades. Prime Minister Narendra Modi had inaugurated the terminal building at Halwara Airport on the 1st of February this year. Ganesh Vasudev Malavankar, the first Lok Sabha Speaker of Independent India, assumed the responsibility of the Lok Sabha Speaker's position on this day in 1952. Extending salutations to him in a social media post. Lok Sabha Speaker Om Birla said that his significant contribution to systematically shaping Indian parliamentary traditions remains notable. Indraprastha Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas CNG by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79.09 rupees and 87.70 rupees.

0: is in Ghaziabad and Noida. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे नोक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अंगांगानंग रंजा थासन आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ का रंजा वन बंगा बाजी से पटानी जे नंग नोक्टे खो बच्चो तारन तजा मेरी जंग छिवे बंगा तारे खो कुछ बच्चा खो बच्चो कोई है जा फुन ताजा मा अरे खबर ही चोटात मांगन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मठचा न्यावे ते हे गवर्नमेंट हे प्रायोरिटी ले गवर्नमेंट हे ठिंगे ना न्या रंग सेंसिटिव जंगा मचो ठोको बाजा अरे को न्यू दिल्ली ना मीडिया टीम ना मिंचो ठोको टाको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हे मा हो मिन जा रोने बंदे तारिक को एनईईटी यूजी 2026 पर तेंगा सुटु का जंगा मा प्रधान मचो ठोको बाजा अरे को एग्जाम सॉक्टे हे मा एडमिट कार्ड पर हाउ में जांच फिर मिलता रे फिमा एवं चुन जांग आम में चुजा टू बाजा अरे गा हाउ में रंपा फिमा एग्जाम पर टू बा ओएम ने मा मदां टू था मा कंप्यूटर बेस टेस्ट सीबीटी ने मा इस वी टू आ जांग आम में मिनिस्टर को मा चोटो को बाजा अरे गा मिनिस्टर को मा एनटीए है मा डेफिनेट रिफॉर्म पल्लम में का आम चोटो को डम को हाउ में रंपा को इरेगुलरिटीज मदां टू रंग एग्जामिनेशन सिस्टम पर रंग से रंग काम पर एमओ काय जांग आम में चोटो को बाजा टीएन कंपनी से मध्य का जाना टीएन था चांदवांगे का जिनको पेट्रोल और डीजल था पर फार्म रूम में जो चांस बने का अभी को पेट्रोल था पर न्यू दिल्ली ना रोग के खूब हाबली पॉइंट सेवन सेवन को बा रोग के खूब फाइनिक पॉइंट सेवन सेवन ना डाउनवांगे का ले डीजल था पर रोग के सब फाइनिक पॉइंट सिक्स सेवन को बा रोग के खूब पॉइंट सिक्स सेवन ना जो चांदवांगे का अभी को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है मा कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी था पर पानी में जो चांस देगा ngale tha chan di ko delhi na cng tha pa kg the ko rok ni 5.09 le gaziabad la noida na rok set 5.70 la dang ta cha adi ko gurugram na kg the ko cng pa rok set 5.12 dang cha chan wang ka nga ma cha chu tho ko ga governor lieutenant general retired kt parnaik ma state wa miyan he particularly adi haso hai na itor gidi lokuja ko wish pa hon wa cha अधिक रुन पाठ वर्ण पम इंडिजिनियस कस्टम पा पंग विजडम ले हासौना हारमोनी ले कल्चरल आइडेंटिटी पा एरोंसी ला जोंगा मा आखा होने का नामा में चोटो को बाजा अधिक गवर्नर मंग इन चोटो को टाको इटोर गी डी आदि हासौ है एग्रीकल्चर लोकु पम आदि हे मिन्यान नेचर ले हासौ वा रुन डोंग हे टुंग नंग हुंग छत में पे जाओ खेसो का नामा चोटो को बाजा अधिक पिग बम वर्ड को को रंगमानी लोकु पमा अजुट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले कॉर्पोरेशन स्पिरिट पा रंगमानी जो नाम में चोटो को जो रहेगा स्टेट कैबिनेट में ठुंडा को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मा मजा स्टेट ना आहान आहान एजेंसी से मा रिक्रूटमेंट एग्जाम रंग हो ना है ना अनफेयर प्रैक्टिसेस ले क्वेश्चन पेपर लीक ने ना सेफगार्ड पा रोंग से रंग थमला मा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 पर फ्रेम हुए रंग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग है प्रपोजल पर अप्रूव हुए को वाचा नाले लेक और कैबिनेट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ले चीफ इंजीनियर से रिक्रूटमेंट रूल से अमेंडमेंट ले मॉडिफिकेशन दम को मावा अरुणाचल प्रदेश टीनेंसी एक्ट 2026 पर ऑपरेशनलाइज हुए रंग थमला मा अरुणाचल प्रदेश टीनेंसी रूल 2026 पर में अप्रूव हुए को वाचा प्राइम मिनिस्टर मा रोज सप्ताह जून को स्टेट कैबिनेट मा मजा अंगांगा मा मानी रंग ऑस्टेरिटी मेजर्स पर जो लोसी देखा अधिक अलमली मेजर्स से डंगेगा पाठ है रंग मिनिस्टर ले गवर्नमेंट डोंगो लंग है मीडियक नंग खुम पर जब मंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डीसीएम ले मिनिस्टर से गाड़ी कॉन्वॉय पर रोग बंगा पार्सन में नसीहत ले मत तो अंगो ठुन है वर्चुअल फर्स्ट पॉलिसी ने मा हुआ नहीं जाओ अधिक मतदान ली ऑफिस काम है टिकट पर छीजा बंगा रंग वो मामा बुक हुआ ले एलटीसी खुम थे रोग बिली जा बंगा रंग वो मामा हुआ रंग में नाइ बाजा अधिक मार्च 2027 तक मत्तो सब ऑर्डिनेट ऑफिस सर्कल ऑफिस एसडीओ हेडक्वार्टर है मा चार्ट पर्सन ई ऑफिस पर ट्वेंक कप्रांग ले मत्तो डोंग लंग स्कूल ले कॉलेज न वे ते ही कार पूलिंग बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोले रामें चोटो को बाजा नले डियक पर रंग से रंग ले हासों है एम्पावर हुआ रंग बाय स्वदेशी बाय लोकल मने लोकल है वा रियक रामें चोटो को बाजा स्टेट लोकायुक्त चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड प्रशांत कुमार डेका ममजा ईटानगर व लोक भवन को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैथी पटनायक डमना चौमिन बाजा अधिकारी चौमिन टाको वानी पमा करप्शन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रंग इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म लमिकाहेना थोमिन बाजा अधिक प्रोसीजर हे ममानी ले हुंसी मनियम रंग वायलेशन हुन पमा गवर्नेंस पर छी सिट लोलो मदांग थंगमा पब्लिक हे पुते दालम पमिन नेसिप रंग रिया जोंगा मा चोथोको बाजा अधिक स्टेट डेवलपमेंट असन गवर्नेंस रंग इंटीग्रिटी ऑनेस्टी ले अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हुन पजा लमे का नाम गवर्नर मा चोथोको बाजा स्टेट गवर्नमेंट मा मजा टू आईएलपी सिस्टम पर मॉडर्नाइज को रंग ले रंग से रंग मतो चे गेट से नंग फेक परमिट पर रेफे रंग क्यूआर कोड वेरिफिकेशन दमना तंतम मा डिजिटाइज ई आईएलपी सिस्टम पर लुसी रंग ऑर्डर पजा लुसी रेका अधिको ता छान ली आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतकब पुलिस वेरिफिकेशन ले कामुत आईएलपी हे रंग स्ट्रिक्ट स्पॉन्सर अकाउंटेबिलिटी पर मतकब जो होने का अधिको परमिट रंग वो नो मा जातों ते हे नंग पेनल्टी अजात ले आहान आईएलपी मा माने ते हे पानी रंग पा रंग न्यूप ठुक मिन जाओ अधिको बाबुक मा एंट्री ग्रेड मार्केट कामुत ठिंग ले आहान लम्हेना चेक हुआ रंग एस पी एस डी ओस डिस्ट्रिक्ट टैक्स फोर्स नंग चेक हुआ रंग में डायरेक्शन पको वाजा मजा चोटो कोएगा तो जाना नुक देखो बड़ा तो जाओ लाथोन मांगता

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और अभी आपने सुना नोक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:08 हो रहे हैं। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे इवनिंग ट्रैक कार्यक्रम का ये पहला गीत। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म से, जी हाँ, नवराज हंस और हर्षदीप कौर की आवाजों में। श्रोता मित्र, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कोई मिल गया फिल्म से।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे एक था टाइगर फिल्म से ये गीत मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक जैन की आवाजों में। जी हाँ, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक, कहीं जाएगा मत।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो।
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये आखिरी गीत तार्जेंटा वंडरकार फिल्म से अलका याग्निक और केके की आवाजों में। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम शाम की महफिल का। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम शाम की महफिल में तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दुश्मन फिल्म के इस बेहतरीन गीत के साथ। इसके बोल है, मुझको आंखों से दिल में उतर जाने दो, कुछ बिगड़ जाने दो, कुछ सवर जाने दो, एक बहाना बने, एक फसाना बने, अभी ना बना तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं प्यार को हो जाने दो। लीजिए प्रस्तुत है दुश्मन फिल्म का ये गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में।

ये दूरिया, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में, लव आजकल फिल्म से। श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए जा रहे गीत आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। श्रोता मित्र, इसी बीच हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा अंतराल।

0: रोचक संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आर्टिकल 15 फिल्म से ये गीत अरमान मलिक की आवाज में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का ये आखिरी गीत। जी हाँ दोस्तों, DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हिंदी सिनेमा जगत की सुपरहिट फिल्म DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, और इस गीत के साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, और आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप बने रहें अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ, अरुण FM 103.1 MHz पर, और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत आज हम आपको फिल्मी गीतों के साथ सुनवा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत कहानी। जी हाँ दोस्तों, शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। फाइल से नजर हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा ने पूछा। इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ। पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा। 500 रुपए, पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा, फिर सिर उठाकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपए उधार दे सकते हैं? ये सुनना था कि पिता का गुस्सा बढ़ गया। वो बेटे को डांटते हुए बोला, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वो वहां से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहा, फिर काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वो सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी जरूरी चीज के लिए 300 रुपए की जरूरत हो, और वैसे भी वो हर समय पैसे मांगता नहीं। वो बेटे के कमरे में गया, देखा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गया क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा मैं जगा हुआ हूँ। बेटा मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपए जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे, पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला।

वाक रह गया। जी हाँ दोस्तों, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और परिजनों के लिए बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें परिवार को महत्व देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज ये बेहद ही प्यारी छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोता मित्र, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। जी हाँ, लीजिए प्रस्तुत है ये गीत एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव फिल्म से, जिसे आवाज दी है कुमार सानू, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, सारिका कपूर ने। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

श्रोतो मित्र, एक रिश्ता फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ श्रोतो मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए श्रोता मित्र, हमारे अरुण एफएम के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आज के कलाकार। श्रोता मित्र, आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज के हमारे कलाकार फनकार हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन, जी हाँ 15 मई को उनका जन्म हुआ था, 15 मई 1967 को। अपनी मुस्कान, शानदार डांस और दमदार अभिनय से उन्होंने कई दशक तक हिंदी सिनेमा में राज किया और अभी भी सक्रिय हैं। तो उनके बारे में आगे भी जानेंगे, इससे पहले आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

अंजाम फिल्म का ये गीत पूर्णिमा की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धक धक कल माधुरी दीक्षित की। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आई और गई, लेकिन माधुरी दीक्षित जैसा स्टारडम बहुत कम लोगों को मिला। 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि निर्माता सिर्फ उनके नाम पर फिल्में बेच दिया करते थे। उनकी मुस्कान, डांस और अभिनय ने उन्हें हर वर्ग का पसंदीदा बना दिया। आज भी उनके गाने और डायलॉग लोगों की जुबान पर रहते हैं। हालांकि सफर इतना आसान नहीं था। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें रिजेक्शन, फ्लॉप फिल्में और विवादों का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारी और से भी, आकाशवाणी ईटानगर की ओर से भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों।

0: माधुरी दीक्षित की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्से आज हम जानेंगे। जी हाँ, 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित का सपना शुरू से अभिनेत्री बनने का नहीं था। वो पढ़ाई में अच्छी थी और माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। बचपन से उन्हें कथक डांस का शौक था और उन्होंने कई सालों तक इसकी ट्रेनिंग ली। शायद यही वजह रही कि आगे चलकर उनका डांस उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। माधुरी ने 1984 में फिल्म अबोध से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। शुरुआती दौर में उन्हें छोटे रोल मिले और कई फिल्म में लगातार फ्लॉप होती रही। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लड़के आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाक माधुरी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्म का गाना एक दो तीन इतना बड़ा हिट हुआ कि हर तरफ सिर्फ माधुरी की चर्चा होने लगी। एक गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लोगों को उनकी मुस्कान, एक्सप्रेशन और डांस स्टाइल बेहद पसंद आया। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

के हैं कौन, और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के नंबर वन अभिनेत्री बना दिया। खासकर हम आपके हैं कौन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। उस दौर में माधुरी की फीस कई बड़े अभिनेताओं से भी ज्यादा बताई जाती थी। फिल्म बेटा के गाने धक धक करने लगा के बाद उन्हें धक धक गर्ल कहा जाने लगा। उनके डांस नंबर सिर्फ गाने नहीं बल्कि ट्रेंड बन जाते थे। चोली के पीछे क्या है और एक दो तीन जैसे गानों ने उन्हें डांस आइकॉन बना दिया। आज भी कई डांस रियलिटी शो में उनके गानों पर परफॉर्मेंस दी जाती है। दोस्तों 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में माधुरी ने विनोद खन्ना के साथ एक बोल्ड किसिंग सीन किया था। उस समय वो इंडस्ट्री में नई थी जबकि विनोद खन्ना उनसे करीब 20 साल बड़े थे। फिल्म रिलीज होने के बाद इस सीन को लेकर काफी विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शूटिंग के दौरान सीन इतना इंटेंस हो गया था कि माधुरी असहज हो गई थी। बाद में एक इंटरव्यू में माधुरी ने माना था कि उन्हें वो सीन नहीं करना चाहिए था क्योंकि फिल्म में उसकी जरूरत नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। यही वजह रही कि उसके बाद उन्होंने कभी इस तरह का बोल्ड सीन नहीं किया। ये घटना आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित किस्सों में गिनी जाती है। करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद माधुरी ने 1999 में अमेरिका के हार्ट सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अमेरिका में परिवार के साथ रहने लगी। उनके इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया था क्योंकि उस समय वो बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री थी। माधुरी तो बेटों की माँ है और उन्होंने लंबे समय तक परिवार को प्राथमिकता दी।

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज के हमारे कलाकार फनकार हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, कई सालों बाद माधुरी ने फिल्म आजा नचले से वापसी की। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन माधुरी की स्क्रीन प्रेजेंस ने फिर साबित कर दिया कि उनका स्टारडम अब भी बरकरार है। इसके बाद वे डेडिस किया, टोटल धमाल जैसी फिल्मों में नजर आई। उन्होंने टीवी रियलिटी शो में जज बनकर भी नई पीढ़ी के बीच अपनी खास जगह बनाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने काम किया और दर्शकों का दिल जीता। तो चलिए इसी के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं टोटल धमाल फिल्म का ये गीत।

माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। आज भी वो सोशल मीडिया, टीवी और फिल्मों के जरिए फैंस से जुड़ी हुई हैं। और हाँ दोस्तों, इस उम्र में भी माधुरी की खूबसूरती, फिटनेस और मुस्कान लोगों को दीवाना बना देती है। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि बॉलीवुड की एवरग्रीन स्टार कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्र, पुकार फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की आवाजों में, ए आर रहमान के म्यूजिक संगीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। प्रभु देवा के साथ माधुरी के डांस का ये अलग अंदाज उस समय लोगों को बहुत पसंद आया था। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही माधुरी दीक्षित पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे निशे श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:06 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम और कार्यक्रम की संचालिका है जुलेखा टोपीवाला।
1: आकाशवाणी ईटानगर प्रेजेंट्स द वीकेंड स्पेशल मैगजीन शो। आई एम योर होस्ट जुलेखा टोपीवाला।

अभी आप सुन रहे थे वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें, आप आगे आप सुन पाएंगे चंद हिंदी फिल्मी गाने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आंखें फिल्म के चंद बेहतरीन नगमे। इस गीत को आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, आशा भोसले और अन्य साथियों की आवाजों में। इसी के साथ ही श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। और आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Hello, Farmaish.
4: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश
4: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश।
5: नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
4: अमल जी, फिर से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी। बागान पे काम करते करते आपके साथ बातचीत हो पाए, बहुत खुशी लग रहा है।
4: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बागान में तो अभी ठंडी होगी।
5: हाँ, पहले तो बारिश हुआ था लेकिन
4: अच्छा।
5: अभी बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, ठंडा।
4: ओके, ठंडा हवा चल रहा है ना। बढ़िया
5: जी।
4: ओके, बढ़िया मौसम। और कौन कौन है साथ में?
5: और साथ में मेरा भाभी है, सासू माँ है और 3 बेटियां है।
4: ओके, सभी मिलकर के काम करते हैं बगान में।
5: हाँ।
4: ओके,
5: मेरे भैया का सासू माँ है अभी।
4: अच्छा, वाह, काफी सारे लोग हैं।
5: हाँ।
4: अच्छा, वो लोग भी रेडियो सुनते हैं क्या?
5: तोड़ रहा है।
4: अच्छा, वो लोग रेडियो सुनते हैं?
5: हाँ, मैं रेडियो लगा देता है ना।
4: अच्छा,
5: दोस्त लोग सुनता है, सभी घर वालों ने सुनता है।
4: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया
5: जी। और वहाँ का मौसम कैसा है, थोड़ा बताइए।
4: हाँ, यहाँ पे मौसम बढ़िया है। रात को बारिश हुआ था, अभी तो बारिश नहीं है लेकिन यहाँ पे भी ठंडा हवा चल रहा है
5: जी। हाँ, मेरा एक फरमाइश था
4: जी। हाँ बताइए।
5: तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म का जो दिल सुनता है गाना है ना, उसको सुनना है।
4: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ
5: की आवाज में उसको सुनना है?
4: हाँ जी, हाँ जी, जरूर।
5: और हमारे दोस्तों को याद कर लेता हूँ।
4: हाँ जी, हाँ जी।
5: सबसे पहला मेरा सौराइडियो का जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है भाईकोन मुंडा, धेमाजी से बिमल बसुमतारी, लखेंद्र वर्मा,

0: जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती, अनब कुमार भट्टाचार्य जी है, और हमारे रालेश प्रजापति है, रमेश पात्रो है, जोगेंद्र रोंगटी है, और अंजलि बसुमतारी, दरासर बसुमतारी है, और आपको भी तो ये गाना डेडिकेट
1: जी जी जी
0: रहेगा,
1: जी मैं भी जरूर सुनूंगा। हाँ
0: और
1: जी
0: आरजी नूरी मैम को भी ये गाना डेडिकेट रहेगा
1: ओके
0: जी, और सभी दोस्तों के लिए मैं ये गाना को डेडिकेट कर रहा हूँ, सबको सुनाना
1: ओके
0: चाहता हूँ।
1: जी जी जी सभी दोस्तों को आप इस गीत को सुनाना चाहते हैं। तो अमोल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके
0: जी
1: पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। अरे वागरा साहब, सादर सप्रेम, प्यार में नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से शारदा प्रसाद जी।
1: जी निसंदेह आपने हमें सही पहचाना
0: जी।
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की अरणी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
0: जी जी जी जी हमारे प्रिय श्रोता शारदा प्रसाद जी जो हमें काफी अच्छी जानकारी देते हैं जी।
1: जी धन्यवाद।
0: जी जी जी और आज कहिए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: मौसम तो आज काफी गर्म हो रहा है, तापमान लगभग 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिक है हो गया है और शाम तक ये तो तापमान और कुछ बढ़ जाएगा, 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा।
0: जी जी
1: रात
0: जी, जी।
1: में 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड का मिनिमम रहता है।
0: ओके रात को मौसम थोड़ा ठीक रहता है।
1: जी जी
0: ओके और कुछ नया कुछ चल रहा है वहाँ पे सुनाइए मथुरा में?
1: नया इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, गर्मी के मारे हाल बिहार भी बहुत कम आ रहे हैं और श्रद्धालु भी सुबह सुबह जो जाते हैं तो मंदिर अपना दर्शन करके आ जाते हैं।
0: तो बेहतर है घर पे ही रहें और हमारा कार्यक्रम सुनते रहें।
1: जी बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। आकाशवाणी से जुड़े रहिए, सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुनते रहिए और लू से भी बचने का अपना एक माध्यम बनता है।
0: जी,
1: हम आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनेंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें लू लगने की कोई समस्या नहीं होगी। इस काफी गर्मी हो रही इसलिए घर के अंदर कार्यक्रम को सुने और आनंद पूर्वक जीवन यापन करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शारदा प्रसाद जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: खेड़ मिलन के।

0: ये गीत फिल्म श्रेष्ठ नाम से आप ये जरूर सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर।
1: जी जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुरीला गीत है, मैं सर्वप्रथम अपने परम मित्र आदरणीय वाघरा साहब को सादर समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: और हमारे मित्र हैं सर्वश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव जी हैं, साथ में राकेश कुमार जी हैं, अर्जुन प्रधान हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ शर्मा जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और विजय कुमार पांडे हैं, केशव प्रसाद शर्मा जी, विद्यारत्न शर्मा, टेकचंद अग्रवाल भैया, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर को सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
1: सभी को समर्पित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा प्रसाद जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: जी हृदय धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जगदीश राय गर्ग जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए,
1: आपका भी हमारा बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी फिलहाल क्या चल रहा है?
1: बस जी, अभी खूबसूरत वादियों का मौसम का नजारा ले रहे हैं। जहाँ
0: अच्छा
1: बड़ा खुशगवार जहाँ का वातावरण है, माहौल है, पालमपुर जैसे एक जन्नत है जहाँ।
0: ओके, क्या बात है। बर्फबारी होती है आपके वहाँ पे?
1: हम बर्फबारी ऊपर पहाड़ों पे होती है।
0: अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे होती है। ओके,
1: तो नीचे मैदानों में कम होती है। वैसे मजा बहुत मिलता है क्योंकि ऊपर पहाड़ियों के जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो पहाड़ियों पे।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी,
1: दिखाई पड़ती है और नीचे भी बड़ा खूबसूरत नजारा होता है। घुमावदार सड़कें और आस पास झरने बहते हैं, तो बड़ा मजा आता है।
0: क्या बात है जगदीश जी, आप तो सही में जन्नत में रह रहे हैं।
1: बिल्कुल सर जी, जन्नत ही है।
0: ओके, और अगर कोई पर्यटक वहाँ घूमने आए तो कौन कौन से जगह घूम सकते हैं?
1: हमारे जहाँ आसपास कहीं भी निकल जाएं। वैसे अच्छा। तो हमारे जो पालमपुर शहर ही एक ऐसा है जिसमें जो चाय के बागान हैं आसपास,
0: ओके,
1: वो देखने लायक हैं। बहुत ही सुंदर नजर आते हैं ऊपर से नीचे को, जैसे देखने में इतने सुंदर नजर आते हैं कि बस देखे जाएं उनको।
0: ओके, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया नजारा।
1: थोड़ी थोड़ी दूर निकल जाएं तो आसपास के गांव भी जहां देखने लायक हैं, गांव भी ऐसे हैं।
0: अच्छा,
1: सचमुच जन्नती हैं।
0: ओके, और गांव में खेती बाड़ी होती है?
1: हाँ, जहाँ बस ज्यादा तो जहाँ चाय की खेती होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी,
1: और थोड़ी बहुत ही जहाँ ज्यादा कुछ थोड़ा सा मैदानी इलाका आ जाए तो वहाँ गेहूं की खेती भी होती है।
0: ओके, जी जी जी जी,
1: ज्यादा तो जहाँ चाय के बागानी है क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ का ढलाने हैं।

0: खिलानों पर चाय बहुत अच्छी होती है।
1: ओके, और वहाँ का चाय कहाँ कहाँ जाता है?
0: चाय जहाँ का जहाँ हिंदुस्तान के सभी शहरों में अक्सर जाता है, क्योंकि थोड़ा सा चाय इस जगह का काफी अच्छी क्वालिटी का है, तो थोड़ा सा महंगा भी है,
1: अच्छा जी जी जी जी
0: जाता सारे देश में है फिर भी।
1: ओके, कोई बात नहीं, अगर दाम कुछ ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए।
0: हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेहत के लिए
1: ओके
0: बहुत अच्छी क्वालिटी है।
1: ओके, तो चलिए मैं भी ढूंढता हूँ आपके वहाँ का, अगर चाय यहाँ पे मिलता है तो जरूर ट्राई करूँगा।
0: जरूर मिलेगा सर, जरूर
1: जी
0: मिलेगा, कहीं भी मिलेगा।
1: जी जी जी जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आपसे जगदीश गर्ग जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: सर आज गीत सुनेंगे, फिल्म है जी आज और कल,
1: ओके
0: तो उसका गीत है रफी साहब जी की आवाज में, मैं उसकी दो लाइनें
1: जी जी
0: गुनगुना
1: जी
0: के बता दूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी।
0: जिवादियां जिसकी जाए बुला रही है तुम्हें, जिवादियां जिसकी जाए बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, जिवादियां जिसकी जाए बुला रही है तुम्हें।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपका इशारा मैं समझ गया, पालमपुर की खूबसूरत वादियां हमें ही बुला रही है, जरूर आएंगे।
0: बुला,
1: जी
0: बिल्कुल सर,
1: जी
0: बिल्कुल बुला
1: जी
0: रही हैं,
1: जी
0: और हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अगर
1: जी
0: आप भी इधर आए, और कोई भी दोस्त श्रोता भी अगर आए तो।
1: ओके जी जी जी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं जरूर आएंगे वे, हम यही उम्मीद करते।
0: बिल्कुल
1: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
0: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय भोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, उदयलाल टेलर जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से भी हैं, और गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से।
1: ओके, तो इन सभी दोस्तों के साथ आप सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: जी सर,
1: तो जगदीश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: धन्यवाद सर,
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: भगवान सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: जी सर बढ़िया है सर। आकाशवाणी ईटानगर को हम हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप पेश करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और कौन कौन सा स्टेशन सुनते हैं आप, कौन कौन सा केंद्र सुनते हैं?
1: स्टेशन तो हम करीबन 400 स्टेशन सुनते हैं, लेकिन हमें ईटानगर भी जब फोन इन कार्यक्रम होता है जब सुनते हैं।
0: ओके, क्या बात है, 400 से ज्यादा स्टेशन से।
1: और हर आकाशवाणी पर कॉल भी लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी।
1: और हमारा एक ग्रुप बना है, हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप सर, उसमें भारत के हर राज्य के श्रोता जुड़े हुए हैं
0: जी। काफी श्रोता हमें कॉल करते हैं और बताते हैं इस ग्रुप के बारे में। सही है, जान करके
1: के माध्यम से ही उसमें डाटा आता है सर पूरा, कि कब कॉल लगाना है, कब उसका प्रसारण होता है, कौन से नंबर पे लगाना है सर, पूरा उसमें डाटा रहता है।
0: क्या बात है क्या बात है, ये सब काम तो एडमिन लोग ही करते होंगे।
1: जी जी सर।
0: जी
1: गौतम राय बोले सर हैं, वो ये काम अपनी खूबी निभाते हैं, रोज लिस्ट डालते हैं, रोज बताते भी हैं।
0: क्या बात है क्या बात है, उनको हमारी ओर से सलाम और नमस्कार कहिएगा
1: जी।
0: जी जी जी, तो चलिए कहिए। हाँ जी।

0: सर फिल्म का नाम बता देता हूँ आपको, फिल्म का नाम है जीत और गाने के बोल है वादों से नहीं, यादों से नहीं, बातों से नहीं प्यार मिलता है।
1: ओके जी, और किन लोगों के साथ?
0: दोस्तों के नाम, हाँ सर कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे
1: जी, जी, जी,
0: तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूरा से है बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश सैली जी, पूनम दीदी कानपुर से, बिजरपुरम से है पूर्णिमा दीदी, और केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी और रमेश प्रजापति, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर।
1: ओके, तो भगवान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हो आप?
1: जी थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, और जब भी आप लोगों से बातचीत होती है और भी बढ़िया हो जाता हूँ।
1: जी मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, किसी भी आकाशवाणी में कॉल लगता है, किसी भी आदमी से बात होती है तो मैं और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको
1: जी बताऊं सर, बड़ा अच्छा आकाशवाणी में कॉल लगा के बात करना
0: जी।
1: उसमें अपनी पसंद का गाना सुनने के साथ में अपनी आवाज के साथ में जब कॉल प्रसारित होता है ना, तो मतलब और भी अच्छा लगता है। गाना सुनने तो क्या है कि हम यूट्यूब पे सुन सकते हैं, मोबाइल
0: जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: टीवी देख सकते हैं,
0: जी जी जी,
1: लेकिन जब आकाशवाणी पे अपनी पसंद का गाना बजता है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको बेहतरीन गाने सुनाते रहेंगे।
1: जी उसी साथ में सर आपको बताऊं, जैसे अभी मोबाइल ऐप से कार्यक्रम आने लगे हैं ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मतलब बिल्कुल श्रोताओं का और मतलब पहले आकाशवाणी इतना लोग नहीं सुन पाते थे क्योंकि रेडियो पर प्रसारण नहीं मिल पाता था।
0: जी जी जी जी,
1: लेकिन जब मोबाइल ऐप पे जब शुरू हुआ ना तो काफी श्रोता बढ़ चुके
0: जी, काफी लोग सुनते हैं आजकल रेडियो ऐप के जरिए। जी बहुत ही
1: उसमें बड़ा फायदा हुआ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, हर राज्य का प्रसारण मिलता है और कहीं पर भी जाओ तो कार्यक्रम सुनने को मिल ही जाता है।
0: जी जी जी, आप घर पर रहे या बाहर कहीं भी आप सुन सकते हैं।
1: जी पहले क्या होता था, जैसे ट्रांजिस्टर पे मिलता था ना प्रसारण, तो केवल घर पे ही सुन सकते थे, या कहीं बाहर जाए तो ट्रांजिस्टर को तो ले जाना असुविधाजनक।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: तो मतलब ये जो मोबाइल पर आने लगा है ना, तो ये समझिए कि आकाशवाणी का प्रचार नेटवर्क फिर से बढ़ चुका है।
0: जी
1: जी सर, एक बात और है, जैसे जो भी श्रोता आकाशवाणी से जुड़ चुके हैं ना, तो उनका तो मतलब आकाशवाणी का मतलब उन्होंने अपना परिवार ही समझ लिया है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल सर। और जब अनाउंसर से बात होती है ना, तो सर भी इतने अच्छे होते हैं, आप भी इतने अच्छे होते हैं, हम भी इतने अच्छे होते हैं, तो कार्यक्रम में यूं ही रोचक बढ़ जाती है।
0: जी चार चांद लग जाता है जी प्रोग्राम।
1: जी बिल्कुल सर
0: जी, तो बहुत ही अच्छा।
1: हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा अभी गर्मी बढ़ चुकी है।

0: और मतलब तापमान भी बड़ा है, मतलब गर्मी होने के साथ साथ में गर्म हवाएं भी चल रही है।
1: ओके
0: तो मतलब धूल भरी आंधियां भी चली थी।
1: ओहो जी जी जी जी
0: जी हाँ, बट है ना अच्छा लग रहा है फिर भी।
1: ओके, तो ऐसे मौसम में तो घर के अंदर रहकर हमारा प्रोग्राम सुनते रहें, यही बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल सर, अपने वक्त की मुझे बातें करने का बड़ा शौक है और आकाशवाणी से
1: अच्छा
0: मुझे मिला है बातें करने का।
1: ओके, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए और बातें करते रहिए।
0: आपको ईटानगर में हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनता हूँ मैं। हेलो फरमाइश हमारा एक ग्रुप बना हुआ है
1: जी,
0: हेलो फरमाइश एक्टर ग्रुप, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती रही।
1: तो चलिए कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: जी सर, फिल्म का नाम सबसे बड़ा खिलाड़ी और गाने के बोले भोली भाली लड़की, खोले तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की।
1: जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी हमारा ग्रुप है हेलो फरमाइश रेडिया एक्टर ग्रुप, उसके दोस्त है हमारे भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम जाधव, गौतम राय बोले, आशुतोष अविनाश, संगीता जी और कानपुर से भी पूनम जी।
1: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को? तो प्रेम सिंह जी हमसे
0: भोपाल से हैं हमारे दोस्त, और सुनील झा भोपाल से हैं।
1: ओके, तो सुनाते हैं आपको,
0: आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप लोगों के साथ जी। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना
0: जी। थैंक यू सो मच,
1: ओके जी जी, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार योगेश जांगड़े जी।
1: बिल्कुल सही पहचाने योगेश
0: जी जी
1: जांगड़े,
0: जी
1: मैं तारा छत्तीसगढ़ से।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे नियमित श्रोता योगेश जांगड़े जी। और कहिए कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: ओके, मौसम तो गर्मी होगी अभी तो?
1: बिल्कुल गर्मी है
0: जी जी, तो घर पर ही होंगे अभी?
1: हाँ, घर से ही बात कर रहे हैं। और अभी
0: ओके,
1: जब से गर्मी लगा है,
0: हाँ हाँ
1: खेती
0: हाँ
1: बाड़ी का कार्य पूर्ण हुआ है, तब से ज्यादातर तो घर में ही रहना होता है।
0: ओके और सुबह से अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन पे आपने कॉल किया?
1: ये मेरा 14वां फोन कॉल है आज का, और दिन
0: आज
1: भर में
0: का क्या
1: कम से
0: बात,
1: कम 32 से 35 कॉल करना है
0: बाप रे बाप रे बाप रे जी। अगर
1: जी।
0: बाहर जाना ना हो तो घर पर रहकर के कॉल करते रहें और गीत
1: बिल्कुल
0: सुने, जानकारी ले रेडियो से। जी जी
1: जी।
0: हाँ जी, तो कहिए आज क्या गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा फिल्म का?
1: तमाम साथियों को आप सुनवा देंगे फिल्म धड़कन से टाइटल सॉन्ग, तुम दिल की धड़कन में रहती हो।
0: धड़कन में रहते हो? जी जी बहुत ही प्यारा गीत है।
1: तमाम साथियों के साथ इस गाने में
0: ओके
1: किसी को नहीं छोड़ेंगे
0: अच्छा।
1: जी
0: जी तो योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं धड़कन फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे दोस्त राकेश जी।
1: जी जी जी जी।
0: और कहिए कैसे हो आप?
1: जी बहुत बढ़िया है। और आप नहीं, आपका ईटानगर का कैसा मौसम?
0: जी हम तो बहुत ही बढ़िया, ईटानगर का मौसम भी बढ़िया है और शिमला का मौसम भी बहुत ही बढ़िया होगा।
1: जी जी, शिमला का मौसम भी बढ़िया है और बारिश हो रही है। और
0: अच्छा
1: जी जी जी, बारिश लगातार हो रही है हमारे यहाँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आप प्रॉपर शिमला से ही बोल रहे हैं या फिर कहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं प्रॉपर शिमला से हूँ, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं हिमाचल का साइनस हूँ और मैं सभी केंद्र के साथ आकाशवाणी ईटानगर।
0: अच्छा जी जी, और शिमला में अगर कोई आए तो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं?
1: शिमला में अगर कोई कोई जाए तो आप जक्कू, माल रोड, ये रिज मैदान, और क्या बोलते रिज मैदान फोटो खींचने का, क्योंकि वो शूटिंग रेंज है वहाँ।
0: अच्छा।
1: होती है फिल्मों की रिज मैदान पे।
0: ओके जी जी,
1: और
0: जी,
1: माल रोड आप घूम सकते हैं, और चिड़ियाघर जो है होता है, और कुफरी, कुफरी आपने सुना होगा?
0: हाँ जी हाँ जी, सुना है सुना है।
1: तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं।
0: ओके।
1: और अगर आपको सेब के जो पेड़ होते हैं वो देखने, तो हमारा क्षेत्र है, मेरा गांव तहसील का नाम है कोटखाई।
0: अच्छा, वहाँ पे सेब अच्छे होते हैं,
1: आप घूम सकते हैं। तो पूरा जो है शिमला काफी घूमने लायक है।
0: ओके।
1: अगर आप आ सकते हैं शिमला, हिमाचल में पूरा शिमला घूम सकते हैं। कुल्लू मनाली तो आपने सुना होगा?
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुना है ये सब जगह।
1: जी जी, आप आ सकते हैं। शायद आप आए नहीं होंगे ना पहली बार।
0: हिमाचल प्रदेश में गया हूँ लेकिन बहुत सालों पहले, तो अभी तो काफी नज़ारा बदल गया होगा।
1: नहीं अब तो नज़ारा, तो शायद आप शिमला आएंगे पहली जब आएंगे।
0: जी जी जी हाँ जी हाँ जी।
1: नहीं तो तब का और अब का बहुत फर्क है।
0: बहुत फर्क होगा। जी जी बात तो सही है।
1: जी जी जी जी,
0: तो चलिए,
1: और आपका बहुत फर्क है।
0: ओके, तो कभी समय मिले तो जरूर आएंगे और देखेंगे कितना बदल गया है।
1: आइएगा शिमला घूमने।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मौसम कौन सा ठीक रहता है वहाँ पे घूमने के लिए?
1: वहाँ का मौसम रहता है मई जून का, क्योंकि जुलाई में तो आप तक का खतरा रहता है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती तो फिर
0: जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी
1: नुकसान हो जाता है। तो फिर यहाँ तो जुलाई अगस्त में तो फिर घूमना अवॉइड करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: अगर आप अगर अक्टूबर में आना है तो अक्टूबर में जा सकते हैं, नवंबर में आ सकते हैं। अगर बर्फ देखने आना तो दिसंबर और जनवरी में आ सकते हैं।
0: ओके, क्या बात है क्या बात है जी, सभी लोग तो बर्फ ही देखना चाहते हैं क्योंकि ज्यादातर
1: जनवरी अच्छा मौसम रहेगा बर्फ देखने के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी। राकेश जी, काफी अच्छी जानकारी दी आपने शिमला हिमाचल के बारे में। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो इससे लाभ उठाकर जरूर घूमने आएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, ईटानगर के माध्यम से अगर जानकारी सुन रहे।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी,
1: तो जरूर घूमने आएंगे शिमला।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आपको सुनाए?
1: आज मुझे फिल्म का नाम है मोहब्बत मूवी का गाना सुनाए। नई वाली मोहब्बत।
0: हाँ जी, गाने के बोल।
1: उसमें एक गाना है, दिल में इससे रहती है, दिल की धड़कन कहती है।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत

0: धन्यवाद जी।
1: तो पूरन वर्मा जयपुर राजस्थान से हैं, और अमर भस्माचार्य हैं, और विमल भस्माचार्य हैं, अविनाश तेली हैं, भगवान सिंह परमार हैं, और मांगीलाल चंदेल हैं, और तमाम सुनने वाले टिपुदास है, तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी।
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी, महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: बढ़िया। और मौसम?
1: मौसम तो धूप है सर, 45 डिग्री है।
0: 45 डिग्री? जी जी जी। तो ऐसे में तो बाहर निकलना मुश्किल होगा।
1: मुश्किल है, मुश्किल है।
0: जी, तो अच्छी बात ये होगी कि आप रेडियो सुने, घर पे बैठे रहें।
1: बिल्कुल, रेडियो सुन रहे सर।
0: जी,
1: रेडियो
0: ओके।
1: सुन रहे रेडियो से। अगर काम रहा कुछ दस्ती वगैरह बन के बाहर जा रहे।
0: ओके ओके ओके। जी जी जी।
1: हाँ, और सर आ रहे सर।
0: ओके, बढ़िया
1: घर
0: बढ़िया।
1: वापस आ रहे, घर में 4 बजे तक हम बाहर नहीं निकल रहे सर।
0: अच्छा, तो दिन भर तो आप काफी स्टेशन सुन सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि सर मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा। जी, क्या काम करते थे आप पहले?
1: मैं मंडी के ऑफिस में काम करता था।
0: ओके।
1: और रिटायर 2024 में रिटायर हुआ।
0: अच्छा, 2024 को।
1: लगातार अब ये फोन में आप आ गया सर, ये आपके देर से पूरे देश भर के कार्यक्रम सुन सकते।
0: जी जी जी जी जी, बहुत ही सुविधा हो गया आजकल रेडियो
1: अच्छा
0: सुनना।
1: सुविधा होगा सर।
0: हाँ जी।
1: तो आपसे हम जुड़ पाए सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़ते रहिए।
1: जी जी सर।
0: जी, हमारा कॉल आता है मंडे और थर्सडे को। थर्सडे को भी आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे।
1: अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं।
0: ओके,
1: हमारे खास करके आलो फरमाश के ये लोग सब लोग लगा रहे हैं आपको कॉल।
0: जी जी जी जी जी जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सर मैं एक तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ सर।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, हमारे खास दोस्त है गौतम जी राय बोले, तुकाराम जी जाधव जी है, भगवान सिंह जी है, और उदयलाल टेलर जी है, दिलीप पाउजा है, और सुनील जा है, और सुरेश जाधव पैटन के है। अभी ये सभी दोस्तों को सुनना है सर, आपको भी सुनना है सर।
0: जी जी जी जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: श्रीपाल जी, हरियाणा से कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा का मौसम कैसा है?
1: सर मौसम से काफी अभी जो गर्म है।
0: अच्छा,
1: तेज।
0: ओके,
1: कुछ दिन पहले मतलब बारिश हुई थी, ओले गिरे थे यहाँ पे।
0: अच्छा, बारिश और ओले।
1: हाँ जी
0: जी, ओके। तो मौसम तो बदलता रहता है, कभी बारिश कभी ओला कभी धूप।
1: हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आज जो मतलब गर्मी ज्यादा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप तो घर पर ही होंगे?
1: नहीं सर, अभी मतलब ड्यूटी पे डेली काम करते हैं, डेली अपडाउन करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आपने बताया था पहले। ओके ओके,
1: हाँ जी, पहली बात हुई आपसे।
0: हाँ जी जी, तो शिवपाल जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम कटी पतंग गाना है, जिस गली में तेरा घर ना हो
0: बालमा। जी
1: जब जी, मुकेश जी की आवाज में।
0: हाँ जी हाँ जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी काफी दोस्त हमारे, योगेश जी हैं, भूपेंद्र जी, गौतम जी हैं, दिलीप आहूजा जी।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो श्रीपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: मैं दुमाल कालाहंडी उड़ीसा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ।
0: मनोज कुमार पटेल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप बताइए।
1: हम तो ठीक ठाक है जी, और आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत ही बढ़िया है, और आपसे बात होती है तो हमें और भी अच्छा लगता है, हम
1: जी
0: और
1: जी
0: बढ़िया
1: जी
0: हो जाते हैं। जी।
1: जी जी
0: और
1: परसों
0: वहाँ
1: तो हमारा उड़ीसा में बारिश हुआ था सर।
0: अच्छा बारिश हो रही है अभी।
1: जी जी जी
0: ओ जी, हमारे यहाँ भी
1: बारिश लगातार चल रहा है जी, शाम को चल
0: अच्छा
1: रहा है बारिश
0: अच्छा, ओके। तो आप जहाँ रहते हैं
1: जी।
0: वो पहाड़ी इलाका है या फिर मैदानी इलाका है आप?
1: पहाड़ी इलाका है हमारा,
0: अच्छा
1: कालाहांडी पहाड़ी इलाका है।
0: अच्छा कालाहंडी में आप रहते हैं। ओके,
1: जी जी जी
0: ओ तो पहाड़ी इलाका में तो बारिश होती ही है।
1: जी
0: जी
1: जी
0: हमारे यहाँ पे भी कल रात बारिश हुई थी, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है।
1: जी
0: ओके, तो बहुत ही बढ़िया मौसम में आप हैं, तो
1: जी जी
0: कहिए बढ़िया मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सूर्या मूवीज का एक गाना है, प्यारी प्यार का है मनाया राम ने, कोई आया मेरा दिल थामने।

0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी और चित्रा सेन जी और मंगेलाल जी।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहेंगे?
1: जी आपको भी ये गाना डेडिकेट
0: जी करना जी जी मैं तो जरूर सुनूंगा ही आप सभी के साथ।
1: जी जी जी
0: तो मनोज जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। जी हाँ श्रोता मित्र, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इसके साथ ही अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: श्रोता मित्रों, ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:25 हो रहे हैं और कुछ ही पलों में यानी 8:30 पर आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम। तो आप बने रहे अरुण FM के साथ।
1: Love my eco because it's got more power
2: and it also comes with all new safety features.
3: We love our eco because we can bring all our friends.
1: We love our eco
2: because it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch SmartPay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम ओ।
6: गीत संगीत
7: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
6: प्यार भरे अल्फाजों में
7: दिल से दिल की बात,
6: बस आपके नाम।
7: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off. Goodbye.
1: श्रोता मित्रों, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, आपको बताते हैं कि इसी के साथ ही हमारे घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जी हाँ श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसके खूबसूरत बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार है एस टी बर्मन, हेमंत कुमार की आवाज में। लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

यही तो है वो देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस मजेदार गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे 16 साल फिल्म के गाने। जी हाँ दोस्तों, बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म के ये गाने।

0: चंद ले रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म के गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत का आप सुन रहे थे शमशेद बेगम की आवाज में। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart pay pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360 degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to rupees 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे पतंगा फिल्म का ये गीत। जी हाँ दोस्तों, शमशेद बेगम और रामचंद्र की आवाजों में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये आखिरी गीत। बिछड़ गया हर साथी देखकर, पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। लीजिए प्रस्तुत है प्यासा फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज में, जिसके खूबसूरत बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार है एस टी बर्मन।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: जाने वो कैसे

हेमंत कुमार की आवाज में प्यासा फिल्म के इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के समापन पर अब हम आ पहुंचे हैं और इसी के साथ ही आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। श्रोता मित्रों, इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा। जी हाँ, इसी प्रकार के ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर होंगे हाजिर कल प्रातः 5:48 पर हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। जाने से पहले आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम कॉल के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति, आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
0: The two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with seven major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor Anshu Joshi, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. Thank you to both our guests for joining us on this program on Akashvani. Before we proceed further into the discussion, let's listen to this special interview of Indian Ambassador to the UAE on the significance of India-UAE ties by Prasar Bharati correspondent Vinod Kumar.
2: The MOU on strategic petroleum reserves comes at a time of significant supply disruptions in West Asia. Ambassador Deepak Mittal, how does this agreement specifically strengthen India's energy security?

0: figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So you'll have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aaiye sunte hain iske pramukh ansh.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन. सर सर कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और जो पानी का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है. उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ भारत में भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर देखे जा पाएंगे.
2: सर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है. नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है. सर उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी.
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं. हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें. यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए.
2: सर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है. उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी की जो मिशन लाइफ है उसके संबंध में मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी दूसरी यात्रा के चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और इनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुटुरपत्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने

आरजी कल मेडिकल कॉलेज में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये फैसला ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हाल ही में हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेब्रस चिप भेंट की। ये उन्नत चिप्स भारत की आगामी 8 एक्स फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को शक्ति प्रदान करेंगी, जिससे भारत की एआई मिशन को बढ़ावा मिलेगा और देश की अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

0: स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में कहा गया कि सदस्य देशों ने एक न्यायसंगत, वैध, लोकतांत्रिक और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान भी किया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य और सहयोगी देश की स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की बहुत सराहना और समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में हुई वार्ता को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। श्री ट्रंप की 3 दिन की चीन यात्रा आज समाप्त हो गई। दोनों नेताओं ने कई दौर की वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार, ईरान विवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों पक्ष स्थिर आर्थिक संबंध बनाए रखने, सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप ने भी यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि वे शी जिनफिंग की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि ताइवान, दुर्लभ धातुओं के निर्यात या सेमीकंडक्टर व्यापार पर कोई सहमति नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्षी ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज जल डब्लू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 24 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमलों में घरों, एक स्कूल और अन्य नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने मुख्य रूप से कीव को निशाना बनाकर 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। भारतीय वुशु टीम ने मकाओ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते।

0: जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया है। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक बीजिंग वार्ता की सराहना की और चीन अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Purnima Samant Kadakoti with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates India's support for safe and uninterrupted navigation through the Strait of Hormuz to ensure regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump hail historic Beijing talks, agree to deepen China-US cooperation. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at the Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz free, open or safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. Is vision mein antarrashtriya kanoon ka palan avashyak hai. Brother, Bharat har paristhiti mein UAE ke saath kandhe se kandha milakar
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. More from our West Asia correspondent.
3: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Saman Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaDAC and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.